सुनो शारदा 90.8 FM। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: सुंदर स्त्री हीरा है लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है. तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में. यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
0: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM. हमें भगवत गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है. वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है. उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा. लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है. हरे कृष्णा.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने से खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। बड़ा ही खूबसूरत गाना है स्वर्ग फिल्म का, गोविंदा साहब के ऊपर वो फिल्म आया गया है, बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई। फिल्म का नाम आता है, गाने का नाम आता है तो जहन में कहीं ना कहीं एक पिक्चर बन जाती है। पिक्चर बनती है मुंबई, वो गढ़ है जहां लोगों की किस्मत बदलती है, जहां एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, यानी कि सबका एक संगम है। जब इस तरीके से मैंने एक छोटी सी रूपरेखा बना दी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसी ही शख्सियत मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है संदीप जी। बहुत बड़ा अनुभव है, आप पेशे से एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और थिएटर एडुकेटर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया है जो आगे चलकर अपना नाम कर रहे हैं, इनका नाम कर रहे हैं। तो फाइनली सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच गगन जी, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। सुनो शारदा 90.8 FM के सभी लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक छोटी सी नाचीज हूँ, सेवा में आपके उपलब्ध हूँ।
3: क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई चीज मुझसे छूट ना गई हो, तो यही मैं कहूंगा कि आप प्लीज अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरीके से आपकी ये जर्नी शुरू हुई।
4: वैसे आपने सब कुछ बता ही दिया है, जर्नी को बताएं तो बहुत बड़ी जर्नी भी है और कह सकते हैं बहुत छोटी जर्नी भी है। जर्नी अभी चल रही है, अभी चलना सीख रहा हूं। वैसे देखा जाए तो 98 में ये जर्नी शुरू हुई थी। मैं अपने पापा के पास देहरादून में था और वहां पर एक एक्टिंग वर्कशॉप चल रही थी। मेरा फ्रेंड मुझे जबरदस्ती खींच के ले गया क्योंकि मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था और छुट्टियों पर आया था। बस वो वर्कशॉप करी और वहां पर एक दिल को एहसास हुआ कि शायद ये वो चीज है

0: जो मैं अपनी ज़िंदगी में ताउम्र करना चाहता हूँ। बस वहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया। पहले एक्टिंग को समझा, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन किया, बहुत सारे प्लेस किए, फिर मौका मिला कि मैं NST की TI कंपनी में जॉब कर सकूं। वहाँ से मैंने और फाइनेंस टच की सीखे, मैंने इसके नुआंसेस सीखे इसके मैंने, और वहाँ से मुझे इसकी कला का एक माहीन चीज़ मुझे समझ में आई। और मुझे वहाँ पर यह भी सिखाया गया कि टीचिंग क्या आर्ट है। बस फिर वहाँ से मैं मुंबई गया, और मुंबई में मैंने बहुत सारे TV सीरियल्स, और वहाँ पर भी मैंने थिएटर किया। मुझे मौका मिला FTI 2004 में, वहाँ पर फिर से एक्टिंग का कोर्स खुला था
1: पुणे
0: में
1: जी।
0: तो रवि बासवानी जी उस वक्त वहाँ के डायरेक्टर थे, तो मुझे मौका मिला कि वहाँ पर हर साल सिलेक्शन प्रोसेस के 4 दिन का वर्कशॉप हम डिज़ाइन करें और उसको कंडक्ट करें। तो 2004 से लेकर 10 तक हम वहाँ पर हर साल जाते थे, तो बहुत अनुभव हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ मैंने प्रोडक्शन हाउसेस में बिहाइंड द कैमरा काम किया, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि बिहाइंड द कैमरा क्या होता है
1: जी।
0: तो लाइव शोज, बिहाइंड द कैमरा, थिएटर, टीचिंग, सब चीजें एक साथ चल रही थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था मुझे, क्योंकि मैं सीखना चाहता था। फिर मुझे मौका मिला, मैं तारक मेहता उल्टा चश्मा का क्रिएटिव हेड रहा।
1: ओह
0: जी,
1: क्या बात है।
0: शुरुआती में 2008-2009 में मैं उसका क्रिएटिव हेड था
1: जी।
0: मैंने उसमें भी बहुत कुछ, एक उसमें जो एक सिंप्लिसिटी थी
1: जी,
0: और उसके जो प्रोड्यूसर है असित मोदी जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं ये TV में कहीं स्टक कर रहा हूँ, मुझे अपनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, बिकॉज वहां पर बहुत चीजें जो हैं एक ढर्रे पे चल रही थी। ये किया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मुझे आगे और अभी सीखना था। तो फिर मैंने वहां से सर को बोला कि मैं निकलना चाहता हूं, तो सर ने मुझे इजाजत दी। फिर मैं वापस थिएटर में आया, क्योंकि मैं
1: थिएटर मुंबई थिएटर में आया या
0: नहीं, मेरे को एक्चुअली क्या हुआ कि FTI पुणे में मिस्टर पेंटल जी मिले थे, वो वहां के HOD थे। उन्होंने, मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि तुम दिल्ली से हो तो तुम मेरठ क्यों नहीं आ जाते। मैंने कहा सर मेरठ, अब उस वक्त मेरठ का नाम जब आपके जहन में आता है तो क्या आता था, वहां क्या होगा,
1: वहां क्या होगा। सही कहा आपने,
0: वहां क्या होगा सर, मतलब मैं मुंबई आया हूँ, दिल्ली छोड़कर आप मुझे दिल्ली के पीछे बुला रहे हैं मेरठ। बट उन्होंने बोला कि वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर एक स्ट्रक्चर खुल रहा है, और एक बार तुम वहां पर आओ देखो
1: जी,
0: अगर तुमको अच्छा लगता है
1: काम करो,
0: काम करो। तो मैं इसी मन से गया था कि
1: देख लेते हैं
0: क्या है, दिल्ली मेरा घर है, तो यही सोच के घर चले जाएंगे और आ जाएंगे। लेकिन जब मैं गया और वहां की एनर्जी जो मुझे मिली और जो मैंने स्ट्रक्चर देखा, वहां के लोगों से मिला जो इसके पीछे थे, तो मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी नजर आया कि जहां मुझे लगा कि यहां मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो मैंने सर का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। फिर वहां पर यंग लोग आते थे
1: जी,
0: तो हमारा जो अनुभव है, जो हमने सीखा है, हम उसको आगे रखते थे, और 6 महीने के कोर्स में हम एक फुल लेंथ नाटक भी करते थे और फिल्मों की ट्रेनिंग भी चलती थी, और पेंटल साहब से मैं भी सीखता था। तो उस वक्त मैंने वहां पर बहुत ऐतिहासिक नाटक किए, जो जिंदगी में शायद मैं भी करना चाहता था, मोहन राकेश का आधे अधूरे, या आप कहें कि आषाढ़ का एक दिन। तो ये सब नाटक हमने, अंधायुग, ये सब नाटक हमने वहां नए लड़कों के साथ किए, और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करी सबने।
1: क्या
0: बस उसके बाद फिर आगे सफर चलता रहा, मैं फिल्में भी करता रहा। 2016 के बाद मैंने वो वहां का सफर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। फिर फ्रीलांस के तौर पर मैं अब टीचिंग, एक्टिंग, एक्टिंग ट्रेनिंग, सब चीजें करता हूँ।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। यूं कहें कि ये जो सफर रहा है माशाल्लाह सुहाना सफर रहा है, इसमें बहुत सारी कहें कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, और हर बात एक कहीं ना कहीं सीख भी देती है। जब आप मुझे अपना परिचय दे रहे थे कि NSD आप ने किया है, NSD के साथ साथ मुंबई आप गए, TV सीरियल आपने किया, तारक मेहता बहुत बड़ा शो है, उसके आप क्रिएटिव हेड रहे, और उसके बाद घर वापसी आपने की, यानी कि बैक टू पवेलियन कह सकते हैं। और जब बैक टू पवेलियन आप हुए तो उसमें भी एक अच्छा सफर आपका शुरू रहा, मेरठ में जो IFTI है उसके आप हेड भी रहे। तो ये जो अनुभव है, मैं समझता हूँ कि आज हमारे स्टूडेंट्स को काम आने वाला है जो उस क्षेत्र में आ रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को स्थापित करें, किन किन बारीकियों को वो सीखें, कहाँ कहां से सीखें, ये सारी बातें हम आप साथ जानेंगे जरूर। सो लिसनर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं संदीप जी, और बहुत सारी बातें इन्होंने हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई, तो ये जो अनुभव है हम साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: ए बाबू मोशाय, ये जिंदगी उस ऊपर वाले के हाथ में है रे। कब न जाने कौन इस जमीन से उठ जाए बाबू मोशाय। कुछ ऐसा ही अंदाज था राजेश खन्ना साहब का, और यहाँ डायलॉग मुझे धुंधला धुंधला याद था, तो बस मैंने थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश की। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कि अगर आप एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, एक एडिटर बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक स्कूल की, एक विद्यालय की बहुत खास जरूरत होती है। और शारदा विश्वविद्यालय का शारदा स्कूल ऑफ फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक स्कूल है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स दूर दराज से आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और अपने आप को आगे लेकर जाते हैं। और इसी बीच में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक संदीप महाजन, जो कि पेशे से बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और प्रोफेशनली इन्होंने एक विधिवत विद्यालय से शिक्षा लेते हुए मुंबई गए। मुंबई के साथ साथ उन्होंने तारक मेहता के आप क्रिएटिव हेड रहे, और उसके बाद IFTI जो कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट है मेरठ में, आप वहां पर एज अ HOD के पद पर आपने वहां काम किया। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर। थैंक यू
0: संदीप सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर किसी का ख्वाब होता है, ये चकाचौंध की दुनिया है कि मैं एक्टर बन जाऊँ, लोग मुझे जाने पूछें, मेरे साथ मुझसे ऑटोग्राफ लें, मेरे साथ सेल्फी लें। इसके पीछे जो मेहनत है वो शायद लोगों को नहीं दिखती, या दिखती है तो आम भाषा में कहें कि वो चाहते हैं कि हथेली पर सरसों उग जाए। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो मेहनत है, जो संघर्ष है, उसके बारे में आने वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर अपने अंदर एक आर्ट नजर आता है, पहले उसको पहचानना बहुत जरूरी है, फिर उसके पीछे की मेहनत उस हिसाब से की जाती है।
0: जी,
1: आपको सिंगर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, या आपको एडिटर बनना है, या आपको रेडियो जॉकी बनना है।
0: जी, जी।
1: जैसे कि आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं।
0: थैंक।
1: तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत होती है। कभी कभार आप खुद उसको फाइंड आउट करने लगते हैं तो शायद बहुत समय लग जाता है उसको करने में। इसीलिए ये विद्यालय आपको काम आते हैं। जैसे आपने बताया कि शारदा का खुद एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। करते करते आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, बट ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि क्रिकेट की दुनिया में होता है, रोहित शर्मा जो हमारे कैप्टन हैं, वो अपने टाइम पे ना बॉलिंग किया करते थे और उनको बॉलिंग करना पसंद था, वो बैटिंग नहीं करते थे इतनी। तो उनके कोच ने एक बार उनको बैटिंग के लिए ओपनर भेज दिया, तो उस वक्त जो उन्होंने किया वो आज हिस्ट्री बन चुका है। अब वो टॉप के बैट्समैन बन चुके हैं। वो बनना चाहते थे बॉलर,
0: जी,
1: लेकिन उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि वो एक बेस्ट बैट्समैन है।
0: जी,
1: तो इसी तरह की आर्ट जो आपके अंदर चाहिए, वो मेहनत ऑफ कोर्स है, जैसा कि आपने कहा, तैयारी चाहिए, लेकिन उस तैयारी के पीछे आपको जो गाइडेंस चाहिए वो एक टीचर ही दे सकता है।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि खुद को पहचानो।
1: जी,
0: यानी कि उस इंसान को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही साथ जो आपने बात की, गुरु की जो महिमा है, जो उसकी काबिलियत है कि दूसरों को पहचानना, उसके बाद उस बात को सुने, जाने, समझे, और फिर वो अपने आप को आगे लेकर जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सर आज के समय में हम देखें कि लोग अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते,
1: समझ में नहीं आता है कि वो अपने ऊपर मेहनत करे क्या। जब आप बोलते हैं ना कि मेहनत करना है, तो वो सोचते हैं कि भाई आप हमें बता दो, हम कर देंगे।
0: मेहनत की सुनने को भी राजी नहीं है।
1: नहीं, आप हमें बता दो, आप हमें बता दो कि हमें ये चश्मा उठा के यहां से यहां रखना है, हम रख देंगे।
0: जी,
1: बट मेहनत वो नहीं है ना। मेहनत सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेहनत ओवरऑल पर्सनैलिटी पे है। आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: अच्छी संगत में आना पड़ेगा। अच्छा देखना पड़ेगा। अच्छे थॉट्स रखने पड़ेंगे। ये जैसे कि एक कहे कि एक तरह की डेली प्रैक्टिस है। सिर्फ एक दिन का काम नहीं,
0: क्या
1: एक महीने का काम नहीं।
0: बहुत खूबसूरत।
1: ये ताउम्र आपको जिंदगी में रखना पड़ेगा।
0: सर इसी बात से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि लोगों का धैर्य टूट जाता है।
1: जी,
0: कई लोगों ने इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत समय दिया है और आज वो अपना काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, देना चाहेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का जिक्र आता है। NSG से वो पास आउट रहे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब उन्होंने की, छोटा छोटा अभिनय किया, और आज जब वो हम देखते हैं कि वो एक ऐसे मुकाम पर है कि उनका एक उदाहरण दिया जाता है।
1: जी जी।
0: तो लोगों को लगता है कि, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने छोटा सा कोर्स कर लिया और उसके बाद हम मुंबई चले जाते हैं, और समय जब ज्यादा लग रहा होता है, या हो सकता है कि वो उन्होंने अपने आप को पकाया नहीं है, तो फिर लगता है कि नहीं यार हम ये नहीं कर सकते, मैं इस लाइन के लिए नहीं हूँ। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, कितना धैर्य बहुत ज़रूरी है?
1: बहुत ज़रूरी है धैर्य। देखिए NSD की मजबूरी है कि वो एक N नंबर ऑफ बच्चे ही ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ से ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, इसी तरह से FTI पुणे है या MP स्कूल ऑफ ड्रामा है, अब तो बहुत सारे वेन्यूज खुल गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा, जैसे मनोज वाजपेयी जी ने NSD में 3 बार ट्राई किया, उनका नहीं हुआ,
0: नहीं हुआ,
1: आज वो भी तो सफल एक्टर है।
0: सफल एक्टर, सही बात
1: है कि नहीं? उन्होंने अपने आप को खुद तैयार किया है। उनको एक उनके गुरुजी मिले, वो दिल्ली के रहने वाले नहीं है, वो दिल्ली शहर में आए, उन्होंने अपनी मेहनत करी, पकाया और वहां से उठा के उनको ले गए शेखर सुमन जी। याद है उनकी पहली फिल्म शेखर सुमन जी के साथ जो उन्होंने करी थी, और उसके बाद रामू जी ने वो फिल्म देखी और उस फिल्म के 4 साल बाद मनोज वाजपेयी रामू सर से मिले और रामू सर उनको 4 साल से ढूंढ रहे थे। कमाल की बात है ना। और उनके सामने बैठे रामू सर उनको पहचान नहीं पाए कि मैं तुमको ढूंढ रहा हूं, वो करेक्टर इतना जबरदस्त किया था उस फिल्म में उन्होंने। तो कहने की बात यह है कि आप अपने आप को तैयार, डेफिनेटली हमें गाइडेंस की जरूरत है कि तैयारी कैसे की जाए, लेकिन आज वेन्यूज बहुत खुल गए हैं, आज यूट्यूब का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, आपके लिए पढ़ने के लिए सामने सब कुछ रखा हुआ, लेकिन हम देखते क्या है? रील्स।
0: सही बात
1: रील्स। तो आप जब रील्स देख रहे हैं और फेसबुक को स्क्रॉल करे जा रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है?
0: जी,
1: चीजें आगे करते जाओ, बस आगे करते जाओ, बस आगे करते, ठहराव और धैर्य खत्म।
0: क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि दोस्तों जिस तरीके से एक आंसर की उम्मीद थी, बहुत खूबसूरत सर ने जवाब दिया है कि ठहराव, यानी कि जिस तरीके से हम बोलते हैं वहाँ पॉज की बात होती है और जिंदगी में ठहराव की बात होती है, यानी कि सोच के समझ के एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ मेरी कोई कमी पेशी रह गई है तो निश्चित तौर पर जो आपके टीचर रहे हैं, जो उस्ताद रहे हैं, उनसे जानिए समझिए, अपनी कमी को खूबी में तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर फतेह आपकी जरूर होगी और आपकी मंजिल आपको मिलेगी जरूर। और क्या है खास जानेंगे जरूर संदीप महाजन जी से, जो कि बहुत अच्छे अभिनेता है, बहुत अच्छे जानकार हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। ये सारी बातें हो रही हैं सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं संदीप महाजन जी, जो कि बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर एडुकेटर हैं और बहुत समय इन्होंने इंडस्ट्री में दिया है, अपने आप को तपाया है, अपने आप को झोंका है और उसके बाद इंसान एक कहते ना कि बनकर निकलकर निखरकर सामने आता है। राह से भटकना इंसान को मैं समझता हूं कि पीछे लेकर चला जाता है और राह पर चलेंगे, समय देंगे, जिसके बारे में सर ने एक एग्जांपल दिया मनोज वाजपेयी का, जिक्र मैंने किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने अपने ऊपर समय लगाया, एक रास्ते पर चलते रहे, मेहनत की, वर्क अपने ऊपर किया, तब जाकर वो आज अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सर, जो लोग भटक जाते हैं, जो अभी

0: आप और हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे। उनको लगता है कि मैं एक्टर बनने आया था, एक्टर में मेरा कुछ हो नहीं रहा, एडिटिंग कर लेते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। तो ये जो लाइन चेंज करते हैं लोग बाग, ये कितना सही है कितना गलत है?
1: देखिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। मुंबई शहर जब आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके सामने आती है वो है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के तौर पर बहुत सारे एक्टर बहुत पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए फिर वो फील्ड चेंज करते हैं, क्योंकि उनको वहां सरवाइव करना होता है। एक तरह से कहें इसमें कुछ अच्छा भी होता है, और एक तरह से कहें कि कुछ चीजें पीछे भी रह जाती हैं। जब कुछ वो और चीज ढूंढते हैं तो उसमें उनको एक नई चीज मिलती है कि इसमें लगता है कि हाँ, ये चीज तो मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ
0: जी,
1: तो वो चीज वो कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप थोड़ा ब्रेक लें, आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, यानी कि उस शहर से बाहर निकले। क्योंकि मेरा मानना यह है, एक्टिंग सिर्फ बॉम्बे में नहीं होती है।
0: क्या बात,
1: आप इस दुनिया में आए हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, वेन्यूज बहुत बड़े हैं। सिर्फ इंडिया में एक्टिंग नहीं होती है, इंडिया से बाहर भी एक्टिंग होती है। एक लिमिटेड साधन फिल्म नहीं है, वेब सीरीज नहीं है। अगर वाकई में आपको एक्टिंग करनी है तो आप अपना छोटा मोटा थिएटर ग्रुप खोल के भी एक्टिंग कर सकते हैं। आपको एक्टिंग से प्यार है कि नहीं है, सवाल ये है।
0: क्या बात, जो आधार है, एक्टिंग
1: आधार है। आपके मन में अगर ये बात आ गई कि यार इसके बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता,
0: है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत,
1: तो आप रास्ते निकालेंगे।
0: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिक्र आता है कि थिएटर का, रंगमंच का, मैं समझता हूँ कि रंगमंच से अगर आप निकल कर गए हैं तो निश्चित तौर पर आप एक सशक्त अभिनय कर सकते हैं और मजे हुए कलाकार हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि बहुत शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, टीवी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, सगे संबंधी किसी के हैं, उन्होंने रंगमंच किया नहीं है, थिएटर किया नहीं है, तो हम एज अ दर्शक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है। एज अ टीचर आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में, उन लोगों के बारे में जो रंगमंच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बिना रंगमंच के, बिना थिएटर के काम कर रहे हैं?
1: देखिए, सब काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है,
0: काम कर रहे हैं, सही बात है।
1: और देखिए, जिनको प्यार है वो जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना एक सीखने का दायरा बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जो टीवी में काम कर रहे हैं वो अच्छे एक्टर नहीं काम कर रहे हैं, और बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, और कुछ टाइम बाद काम करने की फिर वो काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंदर से खुशी नहीं मिलती है उनको।
0: तो यानी कि आप सीधे लफ्जों में अगर हम कहें तो मैं समझता हूँ कि पहले अपने आप को तपाना बहुत जरूरी है। आपने, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि अगर आप टीवी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम करते करते सीख जाते
1: हैं, बिल्कुल,
0: कुछ लोग तो ताउम्र गुजर जाती है, सीखते ही नहीं है, और दर्शकों को उनका अभिनय पसंद नहीं आता, इसलिए चल रहे हैं कि आपके सगे संबंधी इंडस्ट्री में आपको सिर्फ काम मिल रहा है।
1: जैसे कि आप इस प्रोफेशन में हैं, आप जब रात को सोते हैं तो एक अच्छी नींद सोते होंगे कि मैंने आज जो काम किया उस प्रोसेस को आप एंजॉय करते हैं
0: जी।
1: तो इट्स अ प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क। अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना तो काम सीखेंगे आप जरूर, आप रोज सीखेंगे। लेकिन आप सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे।
0: क्या बात है। सो लिसनर्स, कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है, सर का आशय यही है, आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, निश्चित तौर पर कोशिश मेहनत के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो रुपया आपके पीछे पीछे आएगा, जो कि जरूरत है, नो डाउट रुपया आएगा, एक न एक दिन आपको रुपया मिलेगा और आपको आपके काम से जाना जाएगा, काम होगा तो निश्चित तौर पर दाम भी आपको मिलेगा जरूर, और वक्त ये आता है कि मुंह मांगी कीमत आपको मिलती है और डायरेक्टर देते भी हैं। तो इसलिए बस अपने आप को तराशिए, अपने आप को तलाशिए कि मुझे किस दिशा में जाना है, एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या रेडियो जॉकी बनना है। शारदा विश्वविद्यालय भी आपको ऐसी कोर्स ऑफर करता है, और बस यही कहूंगा कि अगर आप इधर उधर कहीं भी यहां आना चाहते हैं तो यहां का माहौल देखिए, फैकल्टी से मिलिए, लोगों से मिलिए, प्लेसमेंट के बारे में जानिए, और जब इस तरीके के गेस्ट हमारे यहाँ विजिट करते हैं, संदीप महाजन जी जैसे जो कि खुद का अपना एक थिएटर ग्रुप भी चलाते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे जरूर। सो बस कहूंगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जानी, न ढाल से न तलवार से बंदा डरता है, तो सिर्फ परवरदिगार से।
1: सर हमने भी अभिनय की जब दुनिया में आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा मिमिक्री मैं भी कर लेता हूँ। अभिनय तो नहीं है लेकिन हाँ नो डाउट यहाँ से मेरी रोजी रोटी चल रही है। अभिनय हम जरूर सीखना चाहते हैं और जो बारीकियां आपने हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई हैं, वो बारीकियां मैं भी अपनी जिंदगी में ध्यान रखूंगा। लिसनर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदीप महाजन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। एनएसडी से आप पास आउट रहे हैं और IFTI पुणे से भी आप पास आउट हैं। तारक मेहता का एक क्रिएटिव हेड के तौर पर आपने वहां काम किया, फिर आप एज अ डायरेक्टर IFTI जो कि मेरठ में एक इंस्टीट्यूट है सर, वहां पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। चूंकि वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो हमें लेनी होती है अनुमति और एक सारांश निकालना होता है, एक निष्कर्ष निकालना होता है, ये चर्चा हमारी कैसी रही और हम आपकी तरफ से एक संदेश जानना चाहते हैं। लेकिन सर बिफोर संदेश, बिफोर मैसेज, मैं ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि इंडस्ट्री जिस तरीके से हमें दिखती है बहुत साफ सुथरी, ऐसा है भी नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई वाली बात मैं क्यों कर रहा हूं कि शोषण भी कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है, लड़के भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं सुसाइड कमिट कर लेते हैं, हताशा भी है, परेशान भी है। तो इस तरीके के माहौल से कैसे वो अपने आप को बचाकर आगे बढ़े। कल परसों मैं एक सुन रहा था, उपासना सिंह जी जो कि बहुत बड़ी एक्टर रही हैं, कहती हैं कि मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि मुझे आपसे फेवर चाहिए और वो फिल्म को उन्होंने ठुकराया, अनिल कपूर के साहब के अपोजिट वो फिल्म थी, और वो कहती हैं कि काश मैं, मेरे साथ वो हादसा ना होता तो मैं आज अनिल कपूर की एक्टर होती। हादसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि कुछ गलत आशा की गई थी उनके साथ, गलत काम की उम्मीद की गई थी, जिसको मैं यहाँ अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रख रहा हूँ। तो मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि किस तरीके से एक इंसान अपने आप को आगे लेकर जाए और इस माहौल से कैसे बचाकर वो अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित करे।
2: देखिए सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूं, मैंने NST की TI कंपनी में जॉब किया था
1: जी,
2: रेपेटरी कंपनी है उनकी
1: जी,
2: उसमें मैं जॉब करता
1: जी, जी जी।
2: अब आपकी बात पर आते हैं, देखिए ये आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है
1: जी,
2: मैं क्या करने आया हूं, मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। शॉर्टकट वही लेता है जिसको अपना रास्ता खुद निकालना नहीं आता है या जो अंदर से कमजोर होता है। उस वक्त जरूर आपको यह लगता है कि मैं इसका एक्टर होता, मैं उसका एक्टर होता और मैं इसका एक्टर होता। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपना रास्ता खुद निकालिए। आपको बुरे लोग मिले हैं तो अच्छे लोग भी मिलेंगे
1: जी,
2: पेशेंस रखिए। यह आपका निर्णय है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। जैसे कि आपने उनका उपासना जी का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने वो छोड़ा, वो उनका फैसला था और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं उनको रिग्रेट नहीं होगा कि उन्होंने वो नहीं किया। अनिल कपूर नो डाउट खुशी होती उनके साथ काम करते, लेकिन इस कीमत पे काम करना
1: सही का किसी को गवारा नहीं है।
2: अगर उनको गवारा नहीं है, ये किस फील्ड में नहीं होता, सभी फील्ड्स में होता है। डिसीजन आपका है, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता है, आपको कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता, आपके सामने एक ऑफर रखते हैं। ये किस फील्ड में नहीं होता, सभी फील्ड्स में होता है। ये आप पे निर्भर करता है, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, जिंदगियां खत्म नहीं हो जाती है।
1: क्या बात है। हाँ हम तो हिल गए क्योंकि ऐसा भी होता है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी था और आपने वाकई बखूबी इस सवाल का एक आंसर रखा कि जिंदगी के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन इंसान को सोच के समझते हुए आगे बढ़ना है और अपना भी ख्याल रखना है और एक अच्छे समाज का निर्माण करना।
2: बिल्कुल सर, जैसे कि मेरा खुद का अपना थिएटर ग्रुप है, कैमरा एंड थिएटर स्टूडियो करके।
1: हाँ
2: ये ग्रुप कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर के तौर पे क्लासेस नहीं लेता हूँ। मैं अपने इस आर्ट को आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, जो मैंने इतने सालों में एक गुण सीखा, क्योंकि मैं जब सीख रहा था तो इस कमी ये कमी मुझे महसूस होती थी कि कोई आकर मुझे बताए कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, लेकिन किसी के पास समय नहीं होता था। तो वो कमी मैं मेरे को महसूस होता है कि मैं जितनों को दे सकता हूं मैं दे दूं। तो मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, मैं मुझसे कहते हैं कि सर मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले मैं उनके अंदर झांकने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई में वो एक्टर बनना चाहते हैं
1: जी,
2: या सिर्फ वो फेम की वजह से आ रहे हैं।
1: शौकिया जी,
2: ये भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एक एक्टर की जिंदगी में 24 घंटे मेहनत है।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत सर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिस क्षेत्र में आप चल रहे हैं स्टूडेंट्स को जो आप तराशते हैं, निखारते हैं, ये जो सिलसिला है निरंतर चलता रहे। और आपका संपर्क सूत्र नंबर यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए, जो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकें, तो आप प्लीज अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए ताकि वो थिएटर करें, आपके पास आए, आपसे सीखें।
2: जी, जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9968135423। इंस्टाग्राम में अकाउंट है कैमरा एंड थिएटर स्टूडियो के नाम से ही। और साथ ही साथ मैं जाऊंगा कि मैं शारदा जी के साथ भी जुड़ूं, उस यूनिवर्सिटी, इस फिल्म स्कूल के साथ भी जुड़ूं, और इस आर्ट को अगर मैं किसी भी तरह क्या आगे दे सकता हूं तो मैं देना चाहूंगा।
1: बहुत खूबसूरत सर, आपने मेरे मन की बात कह दी। और यही मैं जानना चाह रहा था कि शारदा विश्वविद्यालय का जो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्कूल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात रख दी कि आप यहां से जोड़ना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप जैसे टीचर जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने तरफ से बहुत कुछ हीरो को निकाल कर लेकर आ पाएंगे और जो कि इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। जी हाँ, अगर आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय का फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्कूल आपका बाहें फैलाए इस्तकबाल करता है, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा संदीप महाजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी बातें आपने कही। जी प्लीज, कुछ कहना
2: चाहते हैं? एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं या आप हीरो बनना चाहते हैं, एक्टर कैरेक्टर के अंदर फाइंड आउट करता है। फिल्म करेक्टर से बनती है, हीरो से नहीं, क्योंकि हीरो की जिंदगी बहुत छोटी होती है।
1: क्या बात है, ये देखिए देखिए ये छोटी छोटी बातें लिसनर्स, जो अगर आपने इन बातों को गांठ बांध लिया तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: राम नम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:03 हो चुके हैं, 17 तारीख है, क्या है खास जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। खुल के जीने का दिल बेचारा फिल्म से ब्यूटीफुल ट्रैक, ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एंड
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन गिजार। स्टूडियो की घड़ी में 9:11 हो चुके हैं। 17 तारीख है और क्या है आसपास उसके बारे में जान लेते हैं। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से आज साफ रहने वाला है, यानी कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा की। तेज धूप वाला मौसम रहने वाला है और जो टेम्परेचर है इस वक्त वो है 33 डिग्री सेल्सियस। उमस की वजह से 38 डिग्री सेल्सियस जैसा आपको महसूस भी हो रहा होगा और आज बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, यानी कि 0% भी संभावना नहीं है, 0%। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है। न्यूनतम रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हवा की जो गति रहेगी वो रहेगी 4 से 5 मील प्रति घंटे, लगभग 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, ऐसा अनुमान है। और जो ह्यूमिडिटी है जिसे हम कहते हैं आर्द्रता, लगभग 47 से लेकर 54% तक रहने की संभावना है। और दिल्ली एनसीआर की अपडेट क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से बहुत जल्द राहत मिलने की संभावना है। IMD यानी कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि 17 से लेकर 19 जून के बीच दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। हाँ, तो खुले में अगर टेंट लगा रहे हैं तो बहुत सोच के समझ के लगाइएगा, वरना फिर ना कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं। तो मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत से प्यार के साथ मोहब्बत के साथ खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आने वाले दिवस की यानी कि योग दिवस की जो कि 21 जून को है, बहुत बहुत तेरी दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी के उसी के संबंधित हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया, लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया है। प्लीज़ योगा से होगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गगन आपके साथ।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा
1: वादा स्टूडियो क्लॉक 9:21 17 तारीख गुड मॉर्निंग सुप्रभात मैं हूँ अगर आपके साथ बड़ी ही खूबसूरत लाइन है कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो इन खूबसूरत लाइनों के साथ भारत आगे बढ़ता है यही कामना करता है विश्व की अपने देश की सबकी लोग कहते हैं कि यहाँ थोड़ी बम गिरा है वहां गिर रहा है हमारे यहाँ कुछ ऐसा थोड़ी हो रहा है हमारे यहाँ तो सब शांति है कहते ना कि यहाँ पर सब शांति है शांति है शांति लेकिन ये सच है कि विश्व के किसी कोने में अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो दूर देश के किसी कोने में एक व्यक्ति पर उसका फर्क पड़ता हुआ नजर आता है हमने देखा कि ईरान का जो युद्ध अमेरिका के साथ जो चल रहा है मिडल ईस्ट में जो जंग थी वो अब खत्म हो गई है अमेरिका ईरान में शांति समझौता हो गया है और जिसके तहत ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए वो राजी हो गया है और इस बात के लिए लख लख बधाइयां बहुत बहुत दिली दुआएं बहुत बहुत शुभकामनाएं 2 महीने की जो नाकाबंदी थी इस तरीके से वहां पर जो तेल के टैंकर थे दूर दराज के जो देश थे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे तेल महंगा हो रहा था इसके बारे में लोगों को अलर्ट किया गया था लोगों ने सहयोग भी किया तो कहने का मतलब यह है कि जब इस तरीके से महंगाई बढ़ी तो फर्क पड़ा अब हो सकता है कि आने वाले समय में इसके जो दाम है वो स्थिर हो जाए और जो महंगाई है उस पर फर्क पड़ता नजर आएगा हाँ लेकिन जब भी हम जाते थे ना दुकान पे पूछते थे कल तो इतनी की थी आज कितने की कैसे क्या हो गई क्यों हो गई तो दुकान वाले बोलते थे पीछे से हो गया एक दिन मैंने पीछे जाके देखा कुछ नहीं मिला सच बात तो ये कि पीछे से ऐसा मतलब मेरा ये है कि वो भी बहादुर जानते हैं और हम सब जानते हैं लेकिन अब पीछे से तेल सस्ता होने की संभावना है और महंगाई दर भी कम होती हुई नजर आएगी गुड मॉर्निंग सुप्रभात मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर गुड मॉर्निंग

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई, महाकुंभ के बारे में हम सबने जाना, सुना, देखा, बहुत सारी चीजें हमें वहां से मिली। मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूं फीफा वर्ल्ड कप का जो महाकुंभ है उसके बारे में भी हमें जानना समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे स्टार्ट होता है और कितना बड़ा क्रेज है इसके बारे में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन, आपके साथ 9:28 हो चुके हैं, 17 तारीख है और मैं बात करने जा रहा हूं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में यानी कि बहुत ही पॉपुलर इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसका आयोजन हर साल, यानी कि हर साल नहीं कहेंगे, लगभग 4 साल में एक बार होता है। और फीफा का जो पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसके बारे में जो निकलकर अपडेट सामने आ रही कि इसकी जो शुरुआत रही 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी फिलहाल के जो मैचेस हैं 11 जून से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके बारे में जो बातें निकलकर सामने आ रही कि 48 टीमें और 104 मैच इस बार टूर्नामेंट में 32 के बजाय 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। और ग्रुप स्टेज के बाद इस बार पहली बार सुनने में आ रहा है कि राउंड ऑफ 32 नॉकआउट चरण आयोजित किया जाएगा और भारतीय टीम इसमें नहीं है लेकिन भारतीय मूल के कुछ खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इस वर्ल्ड कप के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सच बात तो ये कि बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, यकीन मानिए कि क्रिकेट से भी ज़्यादा क्रेज फुटबॉल का रहता है। तो इस मैच के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।
2: ऑडियो क्रेडिट्स परफॉर्म्ड बाय बंजारे एंड सिमरन कौर, रिटन बाय बंजारे एंड सिमरन कौर, कंपोज्ड बाय बंजारे, म्यूजिक प्रोडक्शन बाय रॉनी। सो लेट्स एंजॉय इट। ऑडियो सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: मलाई कभी लोग बच्चे नहीं खाते, बड़े बुजुर्ग भी नहीं खाते, निकाल देते। वैसे मलाई बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं गगन आपके साथ, 9:37, 17 तारीख। और क्या है खास, उसके बारे में जान लेते
1: हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा।
0: हाँ, क्या कह रहे हो?
1: हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मलाई अच्छी होती है सेहत के लिए।
0: हाँ, चिकनाई युक्त होती है मलाई, और कुछ लोग बच्चे दूध में से निकाल देते हैं, लेकिन मलाई अगर आप खाएंगे तो सेहत के लिए मुफीद है, लाभकारी है। चलिए,
1: एक और मलाई।
0: हाँ, मतलब
1: मलाई की बात, अच्छा मैं पढ़ाई की बात कर लेता हूँ, मलाई पे चला गया।
0: तो पढ़ाई की बात ये कि 21 तारीख का बड़ी बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे हैं, यानी कि नीट की परीक्षा, अब रीनीट की परीक्षा होने जा रही है। सच बात तो ये कि दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आई, लेकिन ये भी सच है कि बहुत जल्द विद इन मंथ में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। आशा करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, एक उम्मीद की किरण टूटती है, विश्वास टूटता है, और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। और रीनीट का जो एग्जाम है, सफलतापूर्वक करने के लिए 21 जून को आंशिक तौर पर, अस्थाई तौर पर टेलीग्राम को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, क्योंकि आरोप लगते रहे कि टेलीग्राम पर यह पेपर लीक हुआ, एक दूसरे तक पहुंचा।
1: हाँ, तो इसी वजह से ऐसा किया गया, फैसला लिया गया। बच्चा लोग, आप इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दो, सिर्फ मलाई पर,
0: मलाई
1: और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, मन लगा के पढ़ो। और वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो।
0: ये क्या, पूरी सुनाओ? नहीं नहीं नहीं, पूरी मत सुनाओ, सिर्फ गाना सुनेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, इंस्टीट्यूट ऑफ सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आने वाले इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच बात तो ये कि परीक्षा बेटा या बेटी दे जरूर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे घर वालों की भी परीक्षाएं चल रही होती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: मुझे इसकी लाइन बहुत अच्छी लगती है।
1: मतलब
0: लेखक ने क्या सोच के लिखा है?
1: मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या सोच के लिखा है?
0: रिश्ते में है ये फरिश्ते मेरे, अदरवाइज तो रिश्ते रिश्ते हैं रिश्ते।
1: बहादुर ने बहुत बड़ी बात कही कि अदरवाइज रिश्ते रिश्ते हैं, यानी कि लीकेज की बात कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये कि प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ रिश्तों को बनाकर और बचाकर बरकरार रखिए।
0: क्या बात है मेरे लेखक, तुम भी बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत आगे जाओगे।
1: कहाँ तक?
0: मुझे किस स्थान लेके जाऊंगा? बिकॉज देर इज अनदर वन शाखा फ्रॉम शारदा विश्वविद्यालय, दोनों का प्रमोशन होगा।
1: चलिए हम वहां से रेडियो करेंगे। फिलहाल करने का मतलब मेरा यही कि एक खूबसूरत लाइन है, एक खूबसूरत श्लोक है कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसका अर्थ यही है कि हे ईश्वर, पिता परमेश्वर, मेरी जो काया है, मेरी जो हेल्थ है, उसको तंदुरुस्त रखेगा, भला चंगा रखेगा, कहीं कोई रोग न सताए, ऐसा आप हमें आशीष दे। लेकिन ईश्वर भी यही कहता है कि आप हर रोज योग करिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट अच्छी लीजिए, टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए। जब ये सारी चीजें आसपास होंगी तो निश्चित तौर पर 21 जून को जो योग दिवस आप और हम पूरा भारत पूरा विश्व मनाने जा रहा है, और कोलकाता में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां इसको सेलिब्रेट करेंगे, और हमारी भी कुछ ना कुछ ऐसी तैयारी, क्योंकि स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर सेहत सही लाभ कई का विशेष कार्यक्रम हम चला रहे हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि दौलत भले ही कमा लीजिए, लेकिन सेहत सबसे बड़ी दौलत है। दौलत रुपया है आपके पास, लेकिन सेहत नहीं है तो वही रुपया आपकी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए खर्च हो जाएगा जनाब। इसलिए सेहतमंद रहेंगे, यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप ही है।
0: जियो मेरे लाल, गुड जॉब। क्या बात है, ठोको
1: क्या
0: ताली।
1: सिर्फ सुरु शादा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, में हूँ गगन आपके साथ।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। नोएडा एयरपोर्ट से जम्मू और नवी मुंबई के लिए भी उड़ानें शुरू। लख लख बधाई है, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द यहां से उड़ानें शुरू होने जा रही हैं, तो अगर आप कहीं का प्लान बना रहे हैं तो बना सकते हैं। वक्त इशारा, मैं होता हूं 9:11। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जनाब, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। बस माशा

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: राम राम दुआ सलाम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम का विशेष कार्यक्रम जो कि स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर चल रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। अरे कहाँ है शशि कपूर साहब, नजर ही नहीं आ रहे। चलिए फोन घुमाते हैं। अरे भाई कहाँ हो तुम, तुम्हारे शो का टाइम हो रहा है और टीकन भाभी भी नहीं आई है अभी तक।
1: अरे भाई गगन तुम्हें बताया तो था आज मैं आंगनवाड़ी सेंटर से लाइव करूंगा शो। आज टीकन भाभी की यहाँ नई माताओं और गर्भवती महिलाओं के साथ एक चर्चा है, मैंने सोचा यहाँ से क्यों ना लाइव शो कर दूं। बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं यहाँ।
0: ओहो मैं तो भूल ही गया, चलो आओ ऑन एयर में ट्यून इन करता हूँ।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे शशि कपूर। और आज मैं पहुंचा हूं एक खास जगह हमारी अपनी बदौली बांगर गांव की आंगनवाड़ी में। यहां आज बहुत सारी माएं और बच्चे मौजूद हैं। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ बात करेंगे, एक ऐसा मुद्दा जिसका प्रत्येक बच्चे पर गहरा असर होता है, कुपोषण। ये हमारे देश में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, इससे बच्चों में बीमारियां और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ हैं हर सवाल का जवाब देने वाली हमारी टीकन भाभी, जो आज हमसे और यहाँ मौजूद सभी महिलाओं से कुछ गंभीर बातें करेंगी। टीकन भाभी एक जिम्मेदार और जानकार माँ के साथ साथ सलाहकार भी हैं। नमस्कार टीकन भाभी जी।
2: नमस्कार शशि जी और नमस्कार मेरी बहनों। अच्छा लग रहा है कि आज हम सब मिलकर अपने बच्चों के पोषण के बारे में खुलकर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे बीच हमारे सामुदायिक रेडियो के आज शशि जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप सब लोगों के सवालों का जवाब देना आरंभ करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि बचपन में कुपोषण एक ऐसी परेशानी की शुरुआत करता है जो जिंदगी भर बच्चे के विकास पर असर डालता है और इसकी शुरुआत होती है एक कमजोर माँ या कम उम्र में शादी और गर्भ धारण से। यदि माँ कमजोर या कुपोषित होगी तो अगली पीढ़ी में कुपोषण का खतरा बढ़ता जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी आपने, और इसीलिए आज ये समझना कि हमारे बच्चों को स्वस्थ और ताकतवर कैसे बनाया जाए उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। टीकन भाभी सबसे पहले ये बताइए कि कुपोषण आखिर है क्या।
2: मैं अपने श्रोताओं और यहाँ बैठी सभी महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि जब बच्चे को सही मात्रा में पोषण वाला खाना नहीं मिलता या बीमारी की वजह से शरीर के पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसी को हम कुपोषण कहते हैं, या सरल भाषा में जिसे सही पोषण ना मिले वो कुपोषण का शिकार हो सकता है।
1: तो टीकन भाभी इसका मतलब सिर्फ खाना खाना ही नहीं होता,
2: पेट भर लेना और सही पोषण मिलना ये दोनों अलग अलग बात हैं। अगर बच्चा सिर्फ चावल खा रहा है लेकिन दाल हरी सब्जी फल दूध नहीं खा रहा तो वो पूरा पोषण नहीं पा रहा।
3: दीदी मेरा बच्चा बहुत कमजोर है लेकिन वो खाना पूरा खा लेता है फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता।
2: गीता बहन ये एक आम परेशानी है, यह आपको देखना होगा कि वो क्या खाता है। उसके अलावा कभी कभी बच्चे को दस्त या सर्दी जुकाम बार बार होता है जिससे शरीर में पोषक तत्व नहीं टिकते, इसी कारण बच्चा कमजोर रह जाता है। इसलिए सही खान पान के साथ साथ साफ सफाई और बीमारी से बचाव भी जरूरी है। दोनों के अभाव से बच्चा अलग अलग तरह से प्रभावित होता है।
1: तो क्या टीकन भाभी कुपोषण के भी प्रकार होते हैं?
2: बिल्कुल, मुख्य तौर पर तीन प्रकार से कुपोषण का असर दिखाई देता है। पहला है कम वजन, अंडर वेट। जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत हल्का होता है, यह स्थिति लंबे समय से चले आ रहे या हालिया कुपोषण या दोनों का परिणाम हो सकती है। शारीरिक वृद्धि में रुकावट। जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से छोटा कद वाला होता है, यह दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत है और इसके पीछे अपर्याप्त पोषण सेवन, बार बार संक्रमण, गलत खान पान की आदतें और गरीबी जैसे कारण होते हैं। दुबलापन, वेस्टिंग। जब बच्चा अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत दुबला होता है, यह अचानक होने वाला कुपोषण है जो वजन बढ़ने में विफलता या वजन घटने के कारण होता है।
3: अभी अभी आपने स्टंटिंग कहा, इसे जरा आसान भाषा में समझाइए।
2: जब बच्चा लगातार कई महीनों तक पोषण की कमी में रहता है, जैसे कि दूध ठीक से नहीं मिल रहा, खाना सही से नहीं मिल रहा, तो उसका शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, उसका कद उसकी उम्र के मुकाबले छोटा रह जाता है। इसे ही स्टंटिंग कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका असर बच्चे की बुद्धि पर भी पड़ता है।
4: दीदी, मेरा बच्चा 2 साल का है पर उसके दांत भी देर से निकले और वो चलने में भी पीछे है, क्या ये कुपोषण का लक्षण है?
2: हाँ बहन, हो सकता है। देर से विकास होना, जैसे चलना, बोलना या दांत निकलना, ये भी कुपोषण की निशानियां हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द उसकी जांच करवाएं।
1: तो श्रोताओं, कुपोषण कोई छोटी बात नहीं। इसका असर हमारे बच्चों के शरीर ही नहीं बल्कि उनके दिमाग और भविष्य पर भी पड़ता है।
2: और अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो माम यानी मध्यम स्तर का तीव्र कुपोषण, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, धीरे धीरे बढ़कर सैम यानी गंभीर तीव्र कुपोषण, सर्व एक्यूट माल न्यूट्रिशन बन सकता है। इससे बच्चे की सेहत और जीवन दोनों पर खतरा मंडरा सकता है।
4: तो आप बताओ कि जो MAM और ACM की कैसे पहचान कर सकते हो, और अगर बच्चे को इन दोनों में से कोई भी हो तो क्या कर सकते हैं?
2: मैं भी वही बताना चाहती हूँ। मैम और सैम, ये दोनों कुपोषण के स्तर होते हैं। जब बच्चे का शरीर थोड़ी मात्रा में कमजोर होता है, यानी वो दुबला है लेकिन बीमारियों से लड़ने की ताकत अभी भी थोड़ी थोड़ी बनी हुई है, तो हम उसे मध्य तीव्र कुपोषण या MAM कहते हैं। लेकिन जब बच्चा बहुत ही कमजोर हो जाता है और उसके शरीर में सूजन आने लगती है या वो लगातार बीमार रहने लगता है, तो वो गंभीर तीव्र कुपोषण या सैम कहलाता है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है।
4: तो ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा MAM में है या ACM में है?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अगर बच्चे की मध्य ऊपरी बाह की माप यानी जिसे MUAC कहते हैं, वह 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो वह SAM की श्रेणी में आता है। अगर माप 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर के बीच है तो वह MAM में आता है। इसके अलावा अगर बच्चे का वजन उसकी लंबाई के मुताबिक बहुत कम है तो भी यह MAM या SAM के लक्षण है।
3: दीदी, आपने पहले सूजन की बात की, लेकिन वो कैसी सूजन होती है?
2: कविता, SAM यानी सैम में कई बार बच्चों के दोनों पाँव में या पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। यह सूजन शरीर में पानी भरने की वजह से होती है। इसे बाइलेटरल पिटिंग एडिमा कहते हैं। अगर आप अंगूठे से पाँव दबाएं और निशान कुछ देर तक बना रहे तो वो सूजन का एक लक्षण है और तुरंत कार्यवाही की जरूरत है।
1: ये तो कोई भी अपने घर में खुद टेस्ट कर सकता है। एडिमा का मतलब सूजन ही होता है। लेकिन टिकन भाभी, अब ये बताइए कि सैम से पीड़ित बच्चों को किन किन बातों का खतरा होता है?
2: जब बच्चा सैम से पीड़ित होता है तो उसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, उसे बार बार दस्त, न्यूमोनिया, बुखार जैसी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर समय पर इलाज ना हो तो जान का खतरा भी हो सकता है।
3: दीदी, ये मध्य ऊपरी बांह का मापन कैसे करते हैं और क्या ये हमें भी सिखाया जा सकता है?
2: बिल्कुल सिखाया जा सकता है सायरा, एम यू ए सी एक खास पट्टी से नापा जाता है जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध है। ये पट्टी हरे, पीले और लाल रंगों में होती है। हरा रंग बच्चा स्वस्थ, पीला एम ए एम, लाल एस ए एम। आंगनवाड़ी दीदी, आप चाहें तो गांव की सभी माओं को ये सिखा सकती हैं ताकि घर पर ही शुरुआती पहचान हो सके।
3: इसका मतलब ये हुआ कि अगर समय पर एम ए एम की पहचान हो जाए तो बच्चा एस ए एम से बच सकता है।
2: बिल्कुल सही, इसलिए तो हम कहते हैं कि समय पर पहचान, समय पर इलाज। यदि बच्चे को एम ए एम है तो घर पर ही आंगनबाड़ी केंद्र की मदद से उसकी स्थिति सुधार सकते हैं। लेकिन अगर एस ए एम है तो उसे तुरंत एनआरसी यानी न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर या पोषण पुनर्वास केंद्र भेजना जरूरी है, जहां उसे विशेष देखभाल, चिकित्सीय सहायता और पौष्टिक आहार मिलते हैं।
1: अरे टीकन भाभी, ये जानकारी तो हर माँ और पिता क्या संपूर्ण परिवार के लिए जरूरी है। मैंने खुद अपने गांव में देखा है कि बच्चों के पेट फूले हुए होते हैं लेकिन हाथ पांव कमजोर होते हैं। अब समझ में आया कि ये मैम की स्थिति में हो सकते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आपको जब कोई बच्चा पतला दिखे या अक्सर बीमार रहे तो तुरंत उसे नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ले जाकर मॉक पट्टी से माप कीजिए और विशेषज्ञ से सलाह लीजिए।
3: दीदी, मेरे बच्चे को खाना खिलाने में बहुत परेशानी होती है, भूख भी नहीं लगती, क्या ये भी कुपोषण का लक्षण है?
2: हाँ सुनीता जी, जब बच्चे को भूख नहीं लगती, बार बार खाना उगलता है या हर चीज से मुंह मोड़ता है तो उसका टेस्ट कराएं। यह परीक्षण एनआरसी या पोषण पुनर्वास केंद्र या पीएचसी में होता है, जहां देखा जाता है कि बच्चा पोषक आहार को कितना खा सकता है। अगर भूख कम है तो ये गंभीर संकेत हो सकता है।
1: तो क्या सबके लिए जरूरी है कि सिर्फ वजन या लंबाई नहीं भूख पर भी नजर रखें? सैम और मैम की पहचान एक बच्चे के लिए सबसे पहला कदम है अपने बच्चे की जान बचाने का।
2: बिल्कुल, हम सब मिलकर आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम और माताएं बच्चों को फिर से ताकतवर बना सकते हैं। एमएएम के बच्चों को हम सामुदायिक स्तर पर ठीक कर सकते हैं यानी घर पर भी, और एसएएम के बच्चों को एनआरसी में भर्ती कर सही पोषण, दवा और देखभाल दी जाती है।
3: और एनआरसी का खर्च?
2: सरकारी योजना के तहत एनआरसी में भर्ती और इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। वहां माँ के रुकने, खाने और देखभाल की भी पूरी व्यवस्था होती है।
4: दीदी, घर पर क्या खिला सकते हैं एमएएम बच्चों को?
2: घर पर हम स्थानीय और सस्ते पोषण युक्त भोजन बना सकते हैं, जैसे मल्टीग्रेन खिचड़ी, दाल, चावल, मूंगफली, हरी सब्जियां, सत्तू और गुड़ का लड्डू, चावल, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों का दलिया, बाजरे की रबड़ी दूध के साथ। जरूरी है कि बच्चा एक बार में थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन दिन में 5-6 बार।
4: और पीने के लिए?
2: साफ पानी, छाछ, नींबू पानी, हल्का सूप सब बहुत अच्छे हैं। याद रहे, हर खाने में थोड़ा सा घी, तेल या मक्खन भी जरूरी है ताकि भोजन में ऊर्जा बढ़े।
5: पर दीदी, सब चीजें हमेशा घर में नहीं होती।
2: सही कह रही हो, इसीलिए तो सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों से मिलने वाला टेक होम राशन THR का बहुत बड़ा सहारा दिया है। और अगर आपका बच्चा MAM या SAM की स्थिति में है तो आपको अतिरिक्त पोषण मिल सकता है, बस आपको वहां जाकर रजिस्टर कराना होगा।
3: अगर बच्चा फिर भी ना खाए तो कोई उपाय है जिससे बच्चा खाने में रुचि ले?
2: बच्चों को साथ बिठाकर प्यार से खेल खेल में खिलाएं और कृपया एक ही खाना बार बार ना दें। अलग अलग रंग और स्वाद की चीजें देने से वो उत्साहित होते हैं।
6: और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा अब उस गंभीर स्थिति से बाहर है?
2: जब बच्चा कमजोर होता है और हम उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो हर 15 दिन में उसका वजन मापा जाना चाहिए। अगर सुधार हो रहा है तो आपका इलाज काम कर रहा है और जो भी कर रहे हैं उसे जारी रखें, अगर नहीं तो PSC या NRC में तुरंत जाएं। यह आप सभी याद रखिए, जन्म के समय कम वजन वाले शिशु में कुपोषण का जोखिम अधिक होता है। यदि लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन का सेवन नहीं किया जाए तो बच्चा धीरे धीरे कुपोषित हो सकता है। दस्त जैसी बीमारियां शरीर से अत्यधिक पोषक तत्वों की हानि का कारण बनती हैं, जिससे बच्चा कुपोषित हो सकता है। तीव्र श्वसन संक्रमण एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बच्चों की पोषण स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
1: और एक बात का ध्यान रखें, रोगों से बचाव का एक और तरीका है साफ पानी, साबुन से हाथ धोना, टीकाकरण और साफ सफाई। ये सब कुपोषण से लड़ाई में आपके हथियार हैं।
2: सही कहा आपने। और आजकल सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, जैसे पोषण अभियान, अस्पताल पोषण थाली, वजन त्योहार और गांव स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान।
1: मतलब ये कि पोषण सिर्फ रसोई की नहीं पूरे गांव की जिम्मेदारी है।
2: बिल्कुल। और माँ का प्यार, आंगनवाड़ी का साथ और गांव की जागरूकता, यही है सही सेहत का राज, जिससे मिलेंगे अनेक लाभ।
6: बिल्कुल, सेहत सही सही मिलेंगे लाभ कहीं, और हम अपने बच्चों का भविष्य स्वस्थ बना सकेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी जी, आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि कुपोषण कोई अकेली समस्या नहीं, ये भोजन, देखभाल, साफ सफाई और प्यार सबका मेल है। लेकिन आपसे विदा लेने के पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने साल 2025 तक दुनिया भर में बच्चों में स्टंटिंग यानी कि कद में रुकावट, वेस्टिंग, कमजोरी, एनीमिया, खून की कमी और कम जन्म वजन को घटाने के लक्ष्य बनाए हैं। ये लक्ष्य तभी प्राप्त होने हैं जब आप सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली बार फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय के साथ। तब तक आंगनवाड़ी आइए, सेवाएं पाइए और अपने बच्चों की सेहत को दीजिए सही लाभ।

0: तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, मिलते हैं अगले एपिसोड में सेहत सही लाभ कई के एक नए अध्याय के साथ।
1: तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
2: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई, टीवी हारेगा देश जीतेगा।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो

जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंद का सेवन कर सकते हैं। शकरगंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा, और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे? जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
4: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
5: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
4: अरे वाह। नंबर दो,
6: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
4: शाबाश। नंबर तीन,
5: बंद करो खुले में जाना, घर घर शौचालय बनवाना।
4: बढ़िया। रोल नंबर चार,
7: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
4: अरे वाह। तुम
5: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
4: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
1: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हाय प्रिया, तुम्हें इतनी टेंशन

0: क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, कार्यक्रम खेत खलियान का उद्देश्य यही है कि आप खेती की नई नई तकनीकों के बारे में जानें, फिर उनका इस्तेमाल अपनी खेती में करें ताकि आपको अधिक लाभ मिले और खेती में आपकी लागत है वो कम हो। किसान मित्रों, भारत के गांव और शहरों में भी आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग अब संभव हो गया है। एक समय था जब भारत के अनेक गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन तकनीकी विकास और सौर ऊर्जा की मदद से आज भारत के अनेक गांवों में बिजली है। हालांकि आज भी भारत में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल हुए हैं। किसान मित्रों, सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी आपकी काफी मदद कर रही है, जिसके लिए कुसुम सोलर योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाती है, जो उनकी कृषि खेती के लिए जल सप्लाई की समस्याओं को हल करता है। इस योजना के तहत किसान भाई कुल लागत का मात्र 10% लगाकर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। किसान मित्रों, कुसुम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाइयों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना है। इस योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदल रही है। तो जो किसान भाई सिंचाई पंपों को डीजल या पेट्रोल की मदद से चलाते हैं, अब उन पंपों को इस कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। तो किसान मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कुसुम योजना का लाभ लेना, तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में इस बारे में बात कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कुसुम योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी, और किस्सा रहेगा जानी चोर का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी से ये रागनी किस्सा था जानी चोर का। किसान मित्रों, भारत सरकार देश के किसानों के साथ ही अब युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर योजनाओं का ऐलान करके युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से पशु मित्र योजना शुरू की गई है। इसके तहत खासकर ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित युवाओं को पशुओं की चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के रोग कारण, उनके रोकथाम की जानकारी, टीकाकरण, ब्रीडिंग और आहार का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थी पशु मित्र के रूप में पशु चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने जिले में आवश्यक सेवा प्रदान कर सकते हैं और पशु मित्र के रूप में कार्य कर अच्छी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। पशु मित्र योजना के माध्यम से पशुपालक किसानों को टीकाकरण, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान और किसान क्रेडिट कार्ड, इन सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पशु मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं जो किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने में उनकी सहायता करेंगे। इससे हमारे पशुपालक किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। पशु मित्र योजना के तहत बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को कार्य निष्पादन के अनुसार निर्धारित मानदेय का लाभ दिया जाएगा। तो जो भी हमारे ग्रामीण युवा पशु मित्र बनना चाहते हैं वो अपने ज़िले में ज़िला पशु चिकित्सालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के बारे में विस्तार से जान करके आवेदन कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना पशु मित्र योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और सुनील चौहान। खिस्सा रहेगा महाभारत का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर और सुनील चौहान से ये रागनी। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, खेती में पानी की खपत को कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। जल संकट बढ़ रहा है और किसानों के लिए कम पानी में अधिक खेती करना एक चुनौती बन चुका है। सही तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन, इसके जरिए हमारे किसान भाई अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के उपयोग से हमारे किसान भाई कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इसीलिए पानी बचाने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन यानी कि बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। इसके अलावा बारिश के पानी का संचय करके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। तो आजकल जो आधुनिक तकनीकें आ गई हैं सिंचाई की, उनका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय की बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ पानी की बचत कर सकते हैं और खेती में लागत कम कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के बारे में, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं तरुण वालियान।

तरुण बालियान द्वारा गाए गए इस उपदेश के साथ ही आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

ये रोमांटिक प्रोग्राम महाभारत की अजीब कहानी कीचक बात आप चंदा केसिस में सुन रहे हैं। और देखिए अच्छे किस्से, अच्छी कहानियां, रोचक कथा आप सुनेंगे तो चंदा केसिस में। और दोस्तों नकली केसिस से सावधान, चंदा केसिस का निशान देखिए। और खास तौर से कोशिंदर की आवाज में ज्यादा से ज्यादा किस्से जो सुनेंगे आप चंदा केसिस के माध्यम से सुनेंगे, जिसमें साथ हारमोनियम पर हंसराज, नक्कारे पर दादा ऋषाल।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने

0: यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे, तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं, एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 MHz, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

दोस्तों, आप सभी ने हिंसा का नाम तो सुना ही होगा। वैसे तो हिंसा कई प्रकार के होते हैं और समय समय पे हमने आपको हर हिंसा के बारे में जानकारी भी दी है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन सब से थोड़ा सा अलग है। आज हम बात करेंगे दहेज के ऊपर। तो ज्यादा कुछ पहले ही ना बताते हुए हम आपको एक कहानी सुनवाते हैं। एक बहुत ही होनहार लड़की थी जिसका नाम दिव्या था। वो अपनी ग्रेजुएशन पास के ही कॉलेज से करती थी। तभी उसकी मुलाकात उस कॉलेज में पढ़ रहे एक लड़के से होती है जिसका नाम वरुण होता है। वैसे वरुण दिखने में बहुत स्मार्ट और पिता का आज्ञाकारी बेटा है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। जैसे तैसे करके उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, लेकिन अब वरुण अपने शहर में जॉब करने लगता है और दिव्या की भी अच्छी खासी जॉब लग जाती है।

0: कैसे हो वरुण?
1: अच्छा हूँ।
0: और घर पे सब लोग ठीक हैं?
1: हाँ, घर पे सब लोग अच्छे हैं। तुम कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: घर पे सब लोग कैसे हैं?
0: घर पे भी सब लोग बढ़िया हैं। तुम बताओ, जॉब कैसी चल रही तुम्हारी?
1: अच्छी चल रही है।
2: वैसे फोन पर तो तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, सामने से तो आवाज ही नहीं निकल रही। सब ठीक तो है ना?
1: अरे ऐसी बात नहीं है, काम का थोड़ा प्रेशर है।
2: हाँ हाँ, काम तो होता ही रहेगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम लोगों को बातें करते हुए काफी दिन हो गए हैं। मुझे लगता है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैं हम दोनों के बारे में पापा से बात करने की सोच रही थी, तुम क्या कहते हो?

0: वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मेरे परिवार वालों को है, लेकिन पापा ने मेरी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और मुझे इस लायक बनाया है, और उनकी उम्मीदें मेरी शादी से बहुत है।
1: तो तुम मुझसे दहेज की बात कर रहे हो क्या?
0: दहेज तो नहीं कह सकते हैं, मगर मेरे पापा यह चाहते हैं कि उन्होंने जितना मुझ पर लगा

0: पाया वो उन्हें वापस मिल जाए।
1: इसे ही तो दहेज कहते हैं।
0: अब तुम इसे जो भी नाम दो।
1: अगर मेरे पापा तुम्हारे पापा को दहेज ना दे, इसका मतलब तुम मुझसे शादी ही नहीं करोगे।
0: मुझे नहीं पता, मैं अपने घर वालों के खिलाफ तो नहीं जा सकता।
1: देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं पापा से बात करूँगी।
0: ठीक है, जैसा हो वैसे बताना मुझे।

0: पापा कैसे हैं आप? आपने दवाई ली अपनी?
1: हाँ बेटा, दवा तो मैंने ले लिया है। बताओ कैसी हो तुम?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ।
1: तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है?
0: हाँ पापा जी, जॉब बहुत अच्छा चल रहा है।
1: वैसे कुछ काम था मुझसे?
0: हाँ

0: बोलो ना बेटा, क्या हुआ?
1: मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
0: हाँ हाँ बताओ।
1: एक्चुअली पापा, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ।
0: अरे वाह, अब तक छुपा के रखा तुमने मुझसे। वैसे कब से चल रहा है ये?
1: कॉलेज के दिनों से पापा।
0: और अभी तक तुमने मुझसे ये बात छुपा के रखा?
1: नहीं पापा, मैं बताने ही वाली थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि सही वक्त आने पर मैं आपसे बता दूंगी। उसकी भी जॉब लग गई है और मैं भी अब जॉब कर रही हूँ।
0: बच्चे बड़े हो गए हैं। तो बताओ, सिर्फ पसंद करती हो कि शादी वादी का भी प्लान है?
1: हाँ पापा, उसी के लिए मैं बात करने आई थी।
0: वैसा नाम क्या है लड़के का?
1: वरुण पापा।
0: वरुण, अच्छा नाम है। तो फिर मीटिंग फिक्स कराइए उनके पापा से हमारी।
1: जी पापा, पर पापा उनकी कुछ शर्तें हैं।
0: शर्तें? कैसी शर्तें?
1: वरुण के पापा चाहते हैं कि उन्होंने अब तक पढ़ाई में जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो उन्हें मिल जाए। साथ ही उनकी फैमिली में दहेज लेने की प्रथा है।
0: बेटा तुम ये क्या, कौन से चक्कर में पड़ गई तुम? तुम्हें पता होना चाहिए कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही जुर्म है। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि नहीं पता है?
1: जी पापा पता तो है, लेकिन वरुण का कहना है कि अगर उन्हें वो पैसे नहीं मिले वो मुझसे शादी नहीं करेगा। और मैं वरुण से बहुत प्यार करती हूँ पापा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती पापा।
0: बेटा देखो, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ। तुम्हारी माँ के जाने के बाद से मैंने पूरी कोशिश की है कि माँ और बाप दोनों का प्यार मैं तुम्हें दे सकूँ। तुम्हारे प्यार में कभी कमी ना आ सके, इसलिए मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। और तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं तुम्हारी शादी ऐसे ही कर दूंगा? मेरे भी कुछ अरमान है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम जिस घर में भी जाओ बहुत धूमधाम से जाओ, महारानी बन के जाओ। अगर वरुण के पिता इतना सब कुछ ना कहते हैं तो भी मैंने अभी तक जो भी कुछ कमाया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए कमाया है। मैं वो सारा उन्हें देता, पर मुझे ये सामने से मांगने वाली बात अच्छी नहीं लगी बेटा। लेकिन तुम्हारी अगर खुशी है इसमें, अगर तुम चाहती हो वहीं पे शादी करना, तो मैं तुम्हारी खुशी के बीच में पत्थर नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करते आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जिस घर में जाओ वहाँ भी तुम्हें ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसे मैं करता हूँ। अगर इतना सब कुछ करने के बाद वो तुम्हें अच्छे से मानते हैं, तुम्हें स्वीकार करते हैं, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनके पिता से बात करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरी उनसे बात कराओ।
1: थैंक यू पापा।

0: राघवेंद्र जी नमस्कार, मैं दिव्या का पापा।
1: नमस्कार नमस्कार, आइए।
2: अच्छा अच्छा, दिव्या के पापा हैं आप?
0: जी जी,
2: आइए आइए बैठिए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी बिटिया ने बताया कि वो आपके बेटे से प्यार करती हैं। एक्चुअली दोनों करते हैं एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
2: हाँ हाँ, इस बारे में पता है मुझे, वरुण बता रहा था।
0: जी, तो इसी सिलसिले में हम आपसे बात करने आए थे। अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो फिर शादी का डेट निकालते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
1: शादी तो हो जाएगा, लेकिन हम आगे कुछ सकते हैं।
0: जी, मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगा है आप इस बारे में बात कर रहे हैं। वही एक्चुअली मैं वही डिस्कस करने भी आया था कि लगे हाथ ये भी बात हो जाए। तो बताइए क्या करना रहेगा।
2: देखिए भाई साहब, वरुण हमारा एक ही बेटा है, इसके अलावा दो लड़कियां भी हैं हमारी। अब बड़ी वाली लड़की का शादी किए हैं हम, बहुत अच्छा घर में, बहुत मतलब धन उन दे के हम उसका शादी किए हैं। 50 लाख तो कैश दिए हैं, एगो गाड़ी दिए हैं, मतलब सोना का गहना तो पूछिए मत। सबको हम एक एक सोना का अंगूठी दिए हैं वहाँ, और लड़के को चैन अंगूठी और दुनिया का सामान ऐसा ऐसा दिए हैं जिसका तो नमो नहीं जानते हैं हम। अब बताइए कि अब हम दिए हैं तो थोड़ा मतलब इस चीज में हिसाब पक्का रहे तो दिक्कत नहीं होता है आगे। अब बताइए, इतना कुछ हम दिए हैं तो हमको भी तो उम्मीद है कि हमको कुछ मिलेगा। अब मेरा बेटा तो हीरा है हीरा, उसकी पढ़ाई में तो पता नहीं कितना पैसा फूंक दिए हैं हम। हम चाहते हैं कि जितना पैसा उसके में लगाए हैं वो भी तो हमें वापस मिले।
0: जी बात तो मतलब ठीक ही है, आप लोग खैर इतने हैसियत में हमसे बड़े हैं। देखिए बहन जी, दिव्या की माता है नहीं, तो बचपन से मैंने कोशिश किया है कि दिव्या को किसी भी चीज की कमी ना पड़े। मैंने उसके मांगने से पहले वो चीज उसके हाथ में लाके रख दिया है, और आज बहुत सालों बाद उसने एक चीज मांगी है, वो है उसकी खुशी। और वो खुशी आपके बेटे में है, और मैं उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर आप जैसे बता रही हैं कि आपने 50 लाख कैश दिया है और वरुण के पढ़ाई में भी आपने इतना पैसा लगाया है, तो इतना सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा।
2: देखिए भाई साहब, अब वो सब बात तो ठीक है, लेकिन हमको जो बताना था हम बता दिए हैं। हमारी भी तो एक छोटी बिटिया अभी पड़ी है, उसके लिए भी तो धन उन चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं होगा उसका शादी। देखिए, जितना कहना था जितना बताना था वो तो हम कह दिए। आपको ठीक लगे तो आप ब्याह करिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, वैसे भी बहुत रिश्ता आ रहा है हमारे बिटवा के लिए। वो तो वरुण आपकी बिटिया से प्यार करता है, इसलिए हम लोग थोड़ा कम कर दिए हैं अमाउंट। बाकी आप समझ लीजिए क्या करना है आपको।
0: ठीक है, कुछ दिन का समय दीजिए मुझे, मैं आपको बताता हूँ।
2: अच्छा ठीक है, जल्दी करिएगा थोड़ा, वरना हमारे पास रिश्ता तो रोज ही आ रहा है।

0: दिव्या, दिव्या।
1: हाँ पापा।
0: पानी लाओ बेटा।
1: अभी लाई। ये लीजिए पापा पानी। और बात हुई आपकी?
0: हाँ बेटा बात तो हुई। वो लोग तो बहुत ज्यादा अमाउंट मांग रहे हैं और बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए उतना पैसे अरेंज कर पाना। कहाँ से लाऊंगा मैं उतना पैसा?
1: पापा,
0: चिंता ना करो बेटी, मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। क्या करूं अब मैं? कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी बेटी को मैं निराश भी नहीं कर सकता और उसे धूमधाम से भी भेजना है कि जहां जाए वो खुश रहे। FD भी तुड़वा ली मैंने, सब मिला जुला के भी 35 लाख हो रहा है। इतने में कैसे हो पाएगा? घर गिरवी रख दूं क्या मैं? हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी दिव्या के जाने के बाद से मैं अकेला ही हूँ और मैं अकेले इतने बड़े घर में कैसे रह पाऊंगा। ये सही है, मैं घर गिरवी रख दूंगा।

0: तो अभी तक आपने सुना कि कैसे ही दिव्या के पिता ने दिव्या के ससुराल जाके उनकी शर्तें मानी और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। दिव्या को मन ही मन में ये गुमान था कि आखिर उसने शादी कर ही लिया है अपने पसंद के लड़के से। वैसे दिव्या बहुत खुश थी कि उसकी शादी वहाँ हुई जहाँ वो चाहती थी, और दिव्या को ये उम्मीद थी कि उसे वहाँ पे बेटी बना के रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके पिता ने बचपन से उसे दिया था। पर उसके ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। किसी को कितनी भी भूख क्यों ना हो, लेकिन बहू तभी खाएगी जब घर के सारे मर्द खा लेंगे। यहाँ तक कि उसे पुरुषों के सामने बैठने की इजाजत भी नहीं थी। दिव्या ने इस बात पे ऐतराज दिखाया, पर उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। और वरुण ने तो ये कह के मुंह फेर लिया कि यह उसके घर की परंपरा है। धीरे धीरे दिव्या को और तरीके से और परंपरा का नाम देके बहुत सताया गया। दिव्या को अपने पिता की बहुत याद आने लगी। दिव्या को ये लगने लगा कि किसी के शर्त में बद के शादी करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वरुण उसको सच में प्यार करता तो वो कभी भी दिव्या की आंखों में आंसू नहीं देखता। वो उसके लिए अपने घर वालों को समझाता कि उसके साथ ऐसे व्यवहार ना किया जाए। लेकिन वरुण चुप रहा और मुंह फेरता चला गया। हमारे घर में यही परंपरा है, ऐसा कुछ कह के वो बातों को टाल दिया करता था। आए दिन दिव्या को किसी न किसी बात पे ताना मारा जाता, उसे पीटा जाता, उसे प्रताड़ित किया जाता, उसे और धन लाने के लिए उकसाया जाता। जब दिव्या को लगा कि अब बात उसके जान पे बन आने वाली है, दिव्या ने मौका देखा और घर से भाग गई, और भाग के अपने पापा के पास चली आई और अपने ऊपर हुए हिंसा के बारे में दिव्या ने अपने पापा को पूरी बात विस्तार से बताई।
1: चूंकि दिव्या के पापा एक पढ़े लिखे इंसान थे, तो उन्होंने पुलिस की मदद से अपने बेटी के साथ हो रहे घरेलू हिंसा पर रोक लगाई। लेकिन बात यहाँ पे आगे रुकती है कि अगर आपके पास किसी का सहारा नहीं है तो आप अपने साथ हो रहे हिंसा को कैसे रोकेंगी? अगर आपके साथ या आपके आसपास पड़ोस में किसी भी महिला या लड़की के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आप महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 या 112 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकती हैं और आपको तुरंत उसका समाधान भी मिलेगा। इसके अलावा अपने क्षेत्र के वन स्टॉप सेंटर या फिर महिला थाना या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से बात करके अपने साथ हो रहे हिंसा पर रोक लगा सकती हैं। और आप सभी महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने वाले पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के मामले से संबंधित है के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अब दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज निषेध अधिनियम संशोधन अधिनियम 1984 और 1986 के तौर पर संशोधित किया गया है, जिसमें दहेज को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। तो अब अगर दहेज की वजह से आपके साथ हिंसा हो रही है तो आप उसे रोक सकती हैं। अगर आप में से किसी के साथ हिंसा हो रही है तो सबसे पहले इस बात की जानकारी आप अपने किसी करीबी को दें, या अगर हो सके तो आपके साथ हुई हिंसा का कोई सबूत हो तो उसे भी पुलिस के साथ जरूर साझा करें। चूंकि दिव्या के साथ मानसिक शारीरिक और मौखिक तौर पर हिंसा हुई थी तो उसने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत शिकायत की और उसे तुरंत सुरक्षा प्रदान की गई। अगर आपके साथ भी इस तरह की हिंसा हो रही है तो आप घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत शिकायत कर हिंसा से निजात पा सकती हैं। इस अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार करने वाले पर कोई दंड या जुर्माना तो नहीं लगाया जाता, लेकिन अदालत द्वारा दिए गए आदेश का अगर वो व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे दंडित जरूर किया जाएगा। हमारे समाज में हर रोज महिलाओं के साथ अलग अलग तरह की हिंसा के केस देखे जाते हैं, वैसे तो हिंसा के कई सारे रूप हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि महिलाओं को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वो सिर्फ प्रताड़ना नहीं, वो हिंसा है। दिव्या ने तो अपने साथ हो रहे हिंसा के खिलाफ अपने पापा के साथ मिलकर आवाज उठाई और उसे रोका भी, लेकिन अब बारी आपकी है।
2: सशक्त बनिए, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए और इसे रोकिए, क्योंकि सुनो समझो चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़ जन का रेडियो मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

स्वाभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान।

उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पसंद ली, बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
0: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
1: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं, सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हुआ बहू, इतनी खांसी?
1: माँ जी, मुझे टीबी है।
0: टीबी? और छुपा कर रखा?
1: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दे।
0: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: इस तरह सुपर हीरो
1: जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
2: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
2: बहुत मजा आएगा।
3: हाय तारा।
2: ओह हाय चमन, आओ मेरे साथ फल खाओ, फिर हम खेलेंगे।
4: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
2: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
3: अरे तारा ये क्या?
2: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
5: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
2: और नलिया पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
2: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: चलो चमन, अब हम खेले।
1: ओके। तारा, मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
0: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को घड़ी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
1: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
0: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है, कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
1: हैं?
0: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
2: अरे बाबा रे, तो फिर

0: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
1: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
1: अप्पा।
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन।
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया।
3: अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
5: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है,
3: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
5: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो, आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
2: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा लाड़ और दुलार। आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? यूं तो हम नहीं बताएंगे, आज बस मन नहीं है ये बताने का कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन हाँ, इतना तय है कि मेरे झोले में आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं और मैं तो अभी अभी झूले का आनंद लेकर आ रही हूँ। खूब मजा आया झूला झूलने में। तो कुछ अंदाजा लगा पाए कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झूला कविता। खूब मजेदार कविता है और इस कविता में एक बच्चे की फरमाइश है, एक बच्चे की ख्वाहिश है, एक बच्चे की इच्छा है कि वह झूला झूलना चाहता है। तो आप सब बच्चे तैयार हैं यह कविता सुनने के लिए? ठीक है, तो हम अपनी कविता शुरू करते हैं जिसका नाम है झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल उड़चल उड़चल उड़चल। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल उड़चल उड़चल उड़चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। कैसी लगी कविता, मजा आया? इस कविता में झूला से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें कही गई हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, अब ये बताइए कि आपको कौन से झूले झूलने पसंद हैं? आप किन चीजों पर झूला झूल सकते हैं और किन पर नहीं? और यह भी बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा झूला कौन सा है? मेरा सबसे पसंदीदा झूला है माँ के पैर और पापा के बाजू। पापा अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रख लेते थे और फिर हम दोनों बहनें उनसे लटक जाते थे और फिर झूला झूलते थे। कभी कभी हम माँ के पैरों पर भी बैठ जाते थे और फिर माँ हमें पैरों से झुलाती थी। ये दोनों झूले मुझे बहुत पसंद हैं। हो सकता है कि आप बच्चों को भी ये झूले पसंद आए। लेकिन इन झूलों के अलावा बहुत सारे झूले हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। ये झूले हमें कहाँ दिखाई देते हैं, कुछ याद आया? बिल्कुल ठीक कहा, ये झूले हमें नजर आते हैं स्कूल में, पार्क में, बगीचे में, आंगन में। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर तरह तरह के झूले हमें दिखाई देते हैं। इस कविता में ये भी कहा गया है ना कि मैं झूला झूलकर बहुत दूर तक जाना चाहता हूँ और आसमान को छूना चाहता हूँ। जब हम किसी पेड़ पर झूला डालकर झूलते हैं तो उसके साथ साथ डाली भी झूलती है और पत्ता भी झूलता है। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम झूला झूलते हैं पेड़ पर तो फिर वह पेड़ हिलता है, जब पेड़ हिलता है तो डाली हिलती है, तो जब डाली हिलती है तो पत्ता पत्ता भी तो हिलता है। तो बस उसका हिलना, मान लीजिए उसका झूलना हो गया। अब इस झूले में हम जितना ऊंचा जा सकते हैं उतना ऊंचा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान से, बहुत ऊंचा नहीं झूलना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं और जब जमीन पर पटक लगेगी तो चोट भी बहुत तेज लगेगी। तो जब हम झूला झूलते हैं तो यूं लगता है कि हम बादलों को भी पकड़ लेंगे। तो ये तो एक कल्पना है बच्चे की। आपके पास ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हैं जिसमें झूला शामिल है। तो आप बताइए अपने मन की बात कि आपको कौन सा झूला पसंद है। ऐसा कौन सा झूला है जिस पर आपको डर लगता है, और ऐसे कौन से झूले हैं जिन पर आप अपने दोस्तों के साथ झूलते हैं। तो हमारे आसपास तरह तरह के झूले हैं। कुछ झूले ऐसे हैं जिस पर हम अकेले ही झूल सकते हैं, कुछ झूले ऐसे हैं जिस पर झूलने के लिए हमें दो लोगों की जरूरत होती है, यानी एक आप और एक आपका दोस्त। तो ऐसे बहुत सारे झूले हैं जिस पर बहुत सारे बच्चे एक साथ झूल सकते हैं। तो कुछ याद आ रहा है आपको ऐसे कौन से झूले हैं? एक झूला तो है फिसल पट्टी। फिसल पट्टी मुझे बहुत पसंद है। उसमें हम एक तरफ सीढ़ियों से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ पट्टी पर फिसल जाते हैं सर से, और फिर नीचे बालू होती है और धप से हम उस पर बैठ जाते हैं। हम एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते हैं और एक के बाद एक बच्चे सर सर करके नीचे फिसलते चले जाते हैं। ये तो हुई फिसल पट्टी। एक झूला ऐसा होता है जिसमें दो डंडे होते हैं और बैठने की जगह होती है, जिसे हम कहते हैं सीसा। तो इस झूले पर हम बैठते हैं और एक व्यक्ति नीचे आता है तो दूसरा ऊपर उठ जाता है, तो जब दूसरा व्यक्ति नीचे जाता है तो पहला व्यक्ति ऊपर आ जाता है। इस झूले पर बड़ा मजा है। और एक और झूला है जो खूब बड़ी सी चकरी की तरह होता है, यानी कि जॉइंट व्हील। इस झूले पर झूलने में बहुत सारे बच्चों को डर लगता होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम उस झूले पर बैठते हैं और वह झूला जब ऊपर जाता है तो हमें बहुत ऊंचाई पर पहुंचने का एहसास होता है, और जब हम बहुत ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो हमें डर लगने लगता है। लेकिन ये सारे बच्चे बहुत बहादुर हैं। वे किसी भी झूले पर झूलने से नहीं डरते, और इस झूले पर एक साथ बहुत सारे बच्चे झूल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास इस तरह के झूले नहीं होते, ना तो फिसल पट्टी होती है, ना सीसा होता है, ना जॉइंट व्हील होता है यानी कि बड़ी सी चक्री, तो फिर हम कुछ जुगाड़ करते हैं झूला झूल

देने का। ऐसा ही जुगाड़ किया दो बच्चों ने, एक का नाम है जीत और एक का नाम है बबली। तो हम आइए सुनते हैं उनकी कहानी कि उन्होंने कैसे झूला बनाया और कैसे झूला झूला। तो सारे बच्चे तैयार हैं ये कहानी सुनने के लिए? ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी जिसका नाम है झूला। वाह, ये तो तुकबंदी हो गई, कविता जिसका नाम है झूला और कहानी जिसका नाम है झूला। तो आज तो झूला ही झूला हो रहा है, तो झूलों के मजे लीजिए और ये कहानी सुनिए। पता है बच्चों, एक दिन जीत और बबली टायर से खेल रहे थे। उनके पास एक काले रंग का चौड़ा सा टायर था। दोनों अपनी अपनी डंडी से उसे चला रहे थे। बबली बोली, वह टायर बहुत तेज दौड़ाती है, गोल गोल दौड़ता हुआ टायर कितना अच्छा लगता है। जीत बोला, उसे तो झूले पर मजा आता है। यह सुनकर बबली का मन झूला झूलने को करने लगा। जीत को भी झूला झूलने की इच्छा हुई, तो दोनों मिलकर झूला ढूंढने लगे। दोनों ने दूर दूर तक झूला ढूंढा, पर झूला कहीं नहीं मिला। वे सोचने लगे कि अब क्या करें। पता है बच्चों, उस मैदान में बहुत सारे पेड़ थे। कई पेड़ों की डालियां बहुत नीचे आ गई थी। दोनों को एक तरकीब सूझी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तरकीब क्या होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। जीत और बबली डाली पर लटक कर झूलने लगे। दोनों को खूब मजा आया, लेकिन वे ज्यादा देर तक नहीं झूल पाए और डाली पर झूलने की वजह से बबली के दोनों हाथ छिल गए थे। जीत की हथेलियों में भी जलन हो रही थी। दोनों हाथ झाड़कर नीचे बैठ गए। पता है, वहां एक लोहे का पाइप भी लगा हुआ था। बबली की नजर उस पाइप पर पड़ी। उसने जीत को वह पाइप दिखाया। जीत और बबली भागकर पाइप के पास पहुंच गए। दोनों पाइप से लटककर झूलने लगे। दोनों को खूब मजा आया, लेकिन जीत और बबली ज्यादा देर तक नहीं झूल पाए। जीत के हाथ में दर्द हो रहा था और बबली भी हाथ पकड़कर बैठ गई। पता है बच्चों आगे क्या हुआ? बबली को एक और तरकीब सूझी। आप बता सकते हैं कि ये तरकीब क्या हो सकती है? सोचिए तो सही। बबली बोली कि अपने टायर से झूला बना लेते हैं और उसमें बैठकर झूला झूलेंगे। जीत को यह बात पसंद आ गई। वह बोला कि वह टायर को पेड़ पर लटकाएगा। बबली बोली कि नहीं, वह टायर को लटकाएगी। बबली ने टायर अपने हाथ में ले लिया। जीत ने उससे टायर छीनने की कोशिश की, और पता है दोनों में इतनी छीना झपटी होने लगी और बबली ने टायर खींचा और जोर से हवा में उछाल दिया। टायर काफी दूर तक उछला और फिर उछला हुआ टायर एक पेड़ की डाली पर लटक गया। अरे वाह, ये तो उनका झूला बन गया। जीत दौड़ कर टायर के पास पहुंच गया। वह उछल कर टायर में बैठ गया। बबली टायर और जीत को धीरे धीरे झुलाने लगी। इसके बाद क्या हुआ होगा? इसके बाद तो बबली की बारी थी टायर पर झूलने की। तो जीत टायर से उतरा और उसने बबली से कहा कि बबली, अब तुम्हारी बारी है टायर पर झूलने की। बबली झटपट टायर पर बैठ गई और जीत जो था वह बबली और टायर को धीरे धीरे झुलाने लगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी झूला? भाई मुझे तो बहुत मजा आया कहानी सुनकर। और जीत और बबली ने जिस तरह से झूले का जुगाड़ किया वह देखकर। इस कहानी में बहुत मजेदार बात हुई। एक मजेदार बात तो वही जो हम भी अपने बचपन में किया करते थे। कौन सी? भाई वही, जब हम टायर पर डंडी मारते थे और टायर को हम आगे आगे ले जाते थे, बस इसी से हम खेलते थे और टायर डगमगाते हुए आगे बढ़ता था। बस हमें टायर का बैलेंस बनाकर रखना था। जहां ये बैलेंस संतुलन खत्म हुआ, टायर धप से जमीन पर आ गया। तो टायर के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि उसका बैलेंस बना रहे। तो हमें बड़ा मजा आता था। हम टायर पे डंडी मारते जाते और टायर आगे बढ़ता जाता और हम उसके पीछे पीछे दौड़ते चलते।
जितनी तेज गति से टायर दौड़ता उतनी तेज गति से हम दौड़ते, तो टायर हमारे आगे आगे और हम टायर के पीछे पीछे। तो बच्चों ये बताइए कि जीत और बबली में किसे झूला झूलने की बात याद आई? कुछ याद आया? बिल्कुल सही बताया आपने, जीत को झूला झूलने की याद आई। और उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि उसे तो झूले पर मजा आता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जीत और बबली झूला ढूंढने लगे। क्या उन्हें झूला मिला? उन्हें तो झूला मिला ही नहीं। तो फिर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा था एक पाइप, और वे पाइप पर लटक कर झूला झूलने लगे, लेकिन उनके हाथ छिल गए थे। और किसी चीज पर भी तो वे झूला झूल रहे थे। याद आ रहा है? शाबाश, वे पेड़ की डाली पकड़कर भी झूला झूल रहे थे। लेकिन बहुत देर तक वे झूला क्यों नहीं झूल पाए थे? शाबाश, आपने बताया कि वे इसलिए ज्यादा देर तक झूला नहीं झूल पाए थे क्योंकि दोनों के हाथ छिल गए थे। तो फिर टायर का झूला कैसे बना? टायर का झूला इस तरह से बना कि वे टायर उठाने लगे और उन्होंने कहा कि मैं इसे पेड़ की डाल पर लटकाऊंगा। बबली ने कहा, नहीं, मैं इसे पेड़ की डाल पर लटकाऊंगी। और दोनों में टायर को लेकर खूब छीना झपटी हुई, और इसी छीना झपटी में बबली ने टायर को दूर फेंका और वह पेड़ की एक मजबूत डाल पर लटक गया। बस लीजिए, उनका झूला तैयार हो गया। तो ये तो थी झूला कहानी, जिसमें जीत और बबली अलग अलग चीजों पे झूला झूलने का मजा ले रहे थे। और अब आपको याद आ रही होगी झूला कविता, जिसमें एक बच्चा झूला झूलने की इच्छा व्यक्त करता है, अपनी इच्छा बताता है। तो दोनों ही चीजों में एक समान बात क्या है? झूला। दोनों ही चीजों में, यानी कहानी और कविता में, झूले की बात आई है। आप भी अपने अनुभव हमें लिखकर भेजिए। जैसे जीत और बबली ने टायर का खेल खेला, फिर पाइप पर लटक कर झूला झूला, फिर तने पर लटक कर झूला झूला, फिर टायर का झूला बनाकर झूला झूला, तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी यादें होंगी जिनमें आप झूला झूलने का मजा ले रहे थे। तो आप ऐसे ही अपनी मन की बातें हमारे पास लिख कर भेजिए। आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं, बस आपको बात कहनी आनी चाहिए। तो आप अपनी बात चित्रों के जरिए भी कह सकते हैं, शब्दों और वाक्यों के जरिए भी कह सकते हैं। आपको किन झूलों पर झूलना बहुत पसंद है, किन झूलों पर झूलने में आपको डर लगता है, और झूलों के इर्द गिर्द कोई मजेदार घटना घटी हो तो उसे भी लिखकर जरूर भेजिएगा, चाहे ये घटना आपके दोस्त के साथ ही क्यों ना घटी हो। तो हम आपकी कहानी, आपकी कविता, आपके अनुभव, आपके चित्रों का इंतजार कर रहे हैं, और यह देखते हैं कि आपकी जिंदगी में झूले कैसे कैसे दिखते हैं।

आप झटपट लिखिए और हम आपसे विदा लेते हैं। और मैं तो जा रही हूँ झूला झूलने, आपको यहीं छोड़कर। और मैं इतना मजा लूंगी झूला झूलने का, और मुझे किसी को बारी भी नहीं देनी। तो मैं चलती हूँ झूला झूलने, और आप लिखिए झूले के बारे में अपनी मजेदार बातें। तब तक के लिए नमस्कार।

0: साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मैंने

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं, अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना, प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीवी

0: की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11666 पर संपर्क करें।
2: टीबी

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और इसी बीच हमारे से जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास हस्ती जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। परिचय कराने से पहले हम बता देते हैं कि उनको रेडियो की दुनिया का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि कहीं ना जाएं, उन्हें सुने। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतिका उनियाल जी, जो कि FM पर बतौर रेडियो जॉकी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
2: सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो शारदा 90.8 FM, इसके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच सम्मिलित हूँ, यानी कि रेडियो की इस दुनिया से मेरा संबंध और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आज के विशेष दिन पर आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और बहुत ही सुहाना सफर रहा है अभी तक रेडियो की दुनिया में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर भी हम कुछ नया देंगे। हमारा हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए।
1: जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में, और रेडियो को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा कि हमारी थीम भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेडियो एम्पावरिंग वॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या AI कम्युनिटी की आवाज को और सशक्त बना सकता है?
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रेडियोस बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और आज के युग में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हर जगह है, तो रेडियो की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं और सशक्त करेगा। सशक्त कहने का मतलब ये है कि हम और भी ज्यादा एम्पावर हो जाएंगे। जहां पहले हम स्ट्रगल किया करते थे कि हम उचित सामग्री इकट्ठा करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट बनाएं, स्क्रिप्ट बनाने के बाद फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें, फिर उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या फिर लाइव जाकर अपने प्रोग्राम्स को दें, लेकिन अब चुटकियों में, क्षण भर में प्रोग्रामिंग आसानी से की जा सकेगी, क्योंकि हमारे पास AI के उपकरण यानी कि टूल्स मौजूद होंगे, जिसकी मदद से हम कुछ ही समय के अंदर अपने काम को कर पाएंगे।
1: हाँ, तो मैम, हम मान सकते हैं कि AI समुदाय की आवाज को और सशक्त बनाएगा और समुदाय के बीच में जाकर और बेहतर प्रोग्रामिंग करेगा। ग्रामीण लोगों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बच्चों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, सब पर AI बेहतर कंटेंट के साथ प्रोग्राम बना रहा है और लोगों के बीच में जाकर एक लोकप्रिय भूमिका में स्थित भी है। तो मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से रेडियो के कंटेंट प्रोडक्शन में सबसे बड़ा बदलाव हमें क्या देखने को मिलेगा?
2: देखिए, अगर कंटेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम अगर अतीत के पन्नों को झांक कर देखिए, तो हमेशा से ही हमने रेडियो के माध्यम से कंटेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। कंटेंट का अर्थ यहाँ पर है हमारी जो आम जनता है, जिनके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं तक पहुँचानी है, जो मुद्दे हैं उन तक पहुँचाने हैं। तो प्रोग्राम के कंटेंट में इस तरह से फर्क पड़ेगा कि अब हम AI टूल्स के माध्यम से या AI के संपर्क में आने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में, यानी कि हमारे समुदाय के भी किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जो उस परेशानी से ग्रसित हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आवाज आम आवाज बन जाए और सब तक बात पहुंचे, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी।
1: जी गीतिका जी, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी है। जैसा कि आप FM रेनबो पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं, समुदाय के लोगों से जुड़ रही हैं, अनेक कार्यक्रम बना रही हैं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, देश विदेश से संबंधित कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, और आपकी आवाज एक सशक्त माध्यम है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम किसी भी रेडियो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते समय मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, क्या AI भी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो मानवीय संवेदनाओं को समझ पाता है?
2: जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, AI अगर हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, तो AI हमें सशक्त सिर्फ डेटा देकर बनाएगा।
1: जी,
2: हमारी पूरी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि भावनात्मकता की अगर बात की जाए तो मनुष्य में है। जब मनुष्य की बात की जाए, तो मनुष्य ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल टूल्स बना रहा है जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कभी क्या किसी को सुना है कि उसने अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया? ऐसा कभी होता नहीं है, और कभी होगा भी नहीं। तो AI सिर्फ मदद करने वाला एक ऐसा टूल है जो हमारे समय को कम करेगा, यानी कि जितना समय हम पहले से लगाते आ रहे हैं किसी काम को करने में उसे कम कर देगा। लेकिन जब भावनाओं की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, तो मनुष्य के आगे कोई और नहीं, मनुष्य अपने आप में एक ही है और एक ही रहेगा, और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वही रहेंगी जो मनुष्य के पास है। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य एक समय पर एक काम कर पाता है, चीजों का आकलन कर पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है, रो पाता है, हंस पाता है। आपने अगर अपने बच्चे के लिए घर पर किसी रोबोट को खरीदा है जो सिर्फ चलता है, नाचता है, गाता है, क्या कभी आपने उसको रोते हुए सुना है? कभी क्या आपने उसको हंसते हुए सुना है? वो तो आप ही के द्वारा चाबी घुमाने पर आपकी भाषा बोलता है, लेकिन आप नहीं बनता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसा कि AI इन दिनों कंटेंट फॉर्मेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सामुदायिक रेडियो हैं, सुनो शारदा 90.8 FM, हम काम ही समुदाय के लिए करते हैं, लोकल वॉइस को आगे लेकर जाना। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से बात करना चाहती है। हम समुदाय की आवाज बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि AI जहां हर तरीके के कंटेंट का निर्माण कर रहा है, क्या लोकल भाषाओं में भी AI अपना कमांड कर पाएगा? कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रजभाषी बोली जाती है। अगर हमें अपने समुदाय से जुड़ना है तो हम लोकल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या AI लोकल लैंग्वेज पर कमांड कर पाएगा या कर पा रहा है, और वो कितना समुदाय तक पहुंच पा रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
2: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब यहाँ पर बात क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है, जैसा कि आपने स्वयं से प्रश्न किया है इस बात में कि हम कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों के समुदाय, अलग अलग गांवों के समुदाय स्टेशंस हो गए, तो वहां पर क्षेत्रता बदलेगी तो भाषा बदलेगी। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है, जब हम अपने जो हमारा प्रदेश है, जो हमारी कम्युनिटी है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे ना, तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है उस भाषा का इस्तेमाल करना अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कंटेंट में, जिससे कि समुदाय है वो हमसे जुड़े। अगर मैं किसी समुदाय को संबोधित कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो शायद मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। AI निश्चित रूप से यहाँ मददगार होगा। AI टूल्स का इस्तेमाल कर हम किसी और भाषा में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे समुदाय के लोगों के बड़ा काम आने वाला है, तो AI टूल्स को यूज कर उसका इस्तेमाल कर मैं उस भाषा का अनुवाद करवा सकती हूँ। क्षण भर में मेरे पास अनुवाद आ जाएगा, और क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं समुदाय से अपना संबंध रखती हूँ, और समुदाय के लोगों को जानती हूँ, उनकी भाषा को जानती हूँ, और मैं फिर उसको अनुदित कर अपनी भाषा में उन तक पहुंचा सकती हूँ।
1: हाँ, तो हम मान सकते हैं कि लोकल भाषाओं में AI अच्छा कंटेंट बना सकता है।
2: जी
1: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे समुदाय के लोग जमीनी स्तर पर आपसे जुड़ें। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम्युनिटी रेडियो के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधनों में कम्युनिटी रेडियो को रन करना होता है। हम टीम

0: मेंबर्स समुदाय के बीच में जाकर समुदाय की आवाज बनना चाहते हैं। ऐसे में एआई की तकनीक को हम किस तरीके से अपना सकते हैं, क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत है, या हम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट एआई के से बनाकर जो कि लोकल डायलेक्ट में हो उनके बीच पहुंचा सकते हैं, इस बारे में आप मुझे थोड़ा
1: देखिए। जब आपने कहा बताया आपको अपने समुदाय से जुड़ना है
0: जी,
1: तो मुझे लगता है कि आधी आत्मीयता तो आपने वहीं पूरी कर ली, जब समुदाय में यानी कि समुदाय में रहने वाले लोगों से आप जाकर मिले, आपने उनसे वन टू वन टॉक करी, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे आत्मीयता वहीं स्थापित कर ली। एआई उनकी मनोस्थिति नहीं जानता है, एआई आपको मदद करेगा, टूल्स मदद करेंगे कि उस क्षेत्र में उस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। आपके पास हो सकता है सवालों की एक फेहरिस्त जरूर बन जाए, लेकिन सच में वो सवाल या वो मुद्दे उस समुदाय में हैं भी या उस समुदाय को संबोधित करने वाले हैं भी या नहीं है, वो आप समुदाय से बात करके पता करेंगे। तो जो भी आप एआई की मदद से सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए। पूरी तरह से किसी भी उपकरण पर अपने आप को निर्भर कर देना ये गलत होगा। आज के युग में जब व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो आप किसी उपकरण पर विश्वास कर फिर से ऐसे कैसे एक रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं जो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनमानस से।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि हम कोई भी रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं समुदाय के लिए, तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समुदाय के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि लोगों की असल मुद्दे क्या है जो रेडियो के माध्यम से जाने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है, क्या हमारे प्रोग्रामों की जो क्रिएटिविटी है उस पर एआई का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया है, या आने वाले समय में एआई ही स्क्रिप्ट लिखेगा, तो फिर रिसर्च करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
1: ये प्रश्न भी आपका बहुत बहुत अच्छा है। एआई स्क्रिप्ट, मैंने फिर कहा कि एआई अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा जो एकदम आर्टिफिशियल है, वो उतनी ही सामग्री आपको देगा जितना उसके परिप्रेक्ष्य में आती है। मैं ये कहती हूँ कि जो दिमाग ईश्वर ने इंसान को दिया है वो शायद इंसान भी मशीन को नहीं दे सकता।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम उसके कहते हैं ना कि हम किसी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों को लेकर आप जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको लगता है ये प्रश्न यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। सिर्फ ये मानव जाति के पास ही इस तरीके के गुण मौजूद है कि उसके पास ये शक्ति है कि वो अच्छे और बुरे में से अच्छे को अपने पास रखता है और बुरे को निकाल देता है। एआई आपकी मदद कर सकता है, आपको स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन फिर आपको पुनः निर्माण अपनी स्क्रिप्ट का, अपने प्रोग्राम का खुद करना होगा। ये मान लीजिए कि आपने अपने किसी साथी से हेल्प मांगी कि मेरी मदद कर दो क्या,
0: बिल्कुल
1: उसने मदद की, पर आपको पूर्ण रूप से भी अपने साथी पर निर्भर नहीं होना है, उसने सिर्फ मदद की है
0: जी,
1: वो आप नहीं है। जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में एक है, आप मुझ जैसी नहीं और मैं आप जैसी नहीं, तो भला फिर मुझ जैसा एआई कैसे हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कहते हैं ना कि मेरा क्लोन कोई भी नहीं अगर सही मायने में देखा जाए।
0: हाँ, सब अपने आप में
1: पूर्ण है, यूनिक है, तो क्योंकि मुझ जैसा कोई नहीं तो मशीन मेरे जैसी कैसे हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मशीन मेरे जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते।
0: जी मैम, आपने बेहद अच्छी बात कही कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और कोई किसी का क्लोन नहीं बन सकता है। मैम, हम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम समुदाय की बात करते हैं, ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सरकार तक जानी चाहिए, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या एआई की मदद से हम ग्रामीण स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा सकते हैं?
1: देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए आपको अब जैसा कि आज मैं सिर्फ एआई नहीं कहूंगी, यहाँ पर आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही काफी है।
0: बिल्कुल,
1: कि आपने आज किसी मुद्दे पर बात करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद जिस तरह से वो वायरल होता है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो देश का मुद्दा बन जाता है। और यही कारण है कि शायद मन की बात जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हुए हैं कि जो देश के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचे, और जब वो मुद्दे उन तक पहुंचते हैं पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, तो वो खुद उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं बकायदा रेडियो पर। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें आत्मिक बने रहना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी बात पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
0: जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं बेहद जरूरी हैं, जो एआई उस तरीके से नहीं रख सकता जिस तरीके से हम रखते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी विषय पर है, क्या एआई के कारण रेडियो में मानवीय संवेदनाएं और भावनाओं की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस वजह से श्रोताओं का जुड़ाव हमसे कम होगा? अगर हम एआई यूज करें तो हम किस हद तक यूज करें कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहें?
1: जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इस पर यही कहूंगी कि एआई यूज कौन कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ट्रांसमिशन की, पैकेजिंग की, तब मैं कहती हूँ कि हम एआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई हमारा काम थोड़ा कम कर देगा कि हमें प्रोग्राम को पैकेज करना है। आप और मैं ये साक्षात्कार कर रहे हैं एआई की मदद से, आने वाले समय में आपने जो बात की और आपने बीच में मान लीजिए कोई गाना लगाना है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं कौन सा गाना लगाऊं। एआई टूल का इस्तेमाल कर तुरंत आपके लिए एक गाने को सर्च कर लिया जाएगा, और देखिए जो समय आप आधा घंटा लगाते उस गाने को ढूंढने में, एआई टूल की मदद से आपने उस गाने को ढूंढ कर
0: कुछ सेकंड्स में ढूंढ कर लगा दिया।
1: तो कहने का अर्थ है कि आपकी प्रोग्रामिंग पैकेजिंग के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है। लेकिन फिर दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी बार बार कि जब मानवीय मुद्दों की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो दुनिया में हम जैसा कोई नहीं, यानी कि मनुष्य जैसा कोई नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि जो संचालन कर रहा है कार्यक्रम का, वो कितना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने कार्य के प्रति, अपनी रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए कितना ज्यादा सजग है। क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी कहूँ ना, वो सब कुछ विश्वसनीय हो,
0: क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है।
1: तो वो एआई पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा। वो जो भी सामग्री तैयार कर रहा है, जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ एआई की मदद से अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो अखबार ढूंढेगा, वो रिसर्च पेपर्स देखेगा, उसके बाद ही संकलन करेगा, संग्रहण करेगा और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेगा। हाँ, एआई की मदद ले सकता है, पर पूर्ण रूप से वो एआई पर निर्भर नहीं करेगा। जो लोग एआई पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रोग्रामिंग में, उनके कार्यक्रमों में आपको कहीं ना कहीं अलगाव महसूस होगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरी बात नहीं कही जा।
0: तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे श्रोता उतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना कि उस प्रोग्राम से जुड़ पाते हैं जो हम खुद रिसर्च करके, मेहनत करके, समुदाय के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को महसूस कर बनाते हैं।
1: अब देखिए, माना आप और मैं यहाँ पर एक साक्षात्कार कर रहे हैं, और आपको मेरी जिंदगी की वो पहलू पता है जो शायद किसी को नहीं पता, तो बताइए कि आत्मीयता इस बात से ज्यादा होगी कि आपने उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर आपने एआई के माध्यम से मेरे बारे में ढूंढ कर या उसके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाकर मुझसे सवाल
0: पूछ लिया? जो मुझे आपके बारे में जानकारी है, जो आत्मीय जानकारी है, उस पर अगर मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूंगी तो मेरे श्रोता ज्यादा जुड़ेंगे आपसे।
1: जी जी, तो यही फर्क रहने वाला है कि जो लोग पूर्ण रूप से एआई पर निर्भर रहेंगे वो कहीं ना कहीं उस मानवीय पहलू को भूल जाएंगे।
0: जी,
1: वो उसको उजागर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा जुड़ेंगे अपने लोगों तक।
0: अच्छा मैम, कहते हैं कि रेडियो दिल की आवाज़ है। रेडियो पर जब कोई गाना बजता है तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है। क्या मशीन दिल की आवाज सुन सकती है? मशीन से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
1: जी, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर ने ये दिल सिर्फ इंसान को दिया है, मशीन को नहीं, तो भला मशीन हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन पाएगी? मैं फिर से कहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बार बार बात हो रही है, ये मानव की ही खोज है। भगवान ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान ने मशीन को बनाया है। जिस तरह से ईश्वर सर्वोपरि है, उसी प्रकार मानव सर्वोपरि है मशीन के लिए। मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन को भी चलाना पड़ेगा, मशीन को भी कमांड देना पड़ेगा, तो वो हम ही तो देंगे ना। तो जब हम ही देंगे तो हम क्यों सिर्फ मशीन लर्निंग पर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से? मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर।
0: तो मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो करना है, लेकिन हमें पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना। मैम, आजकल एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, वॉइस क्लोनिंग। कई लोगों ने कहा भी कि हमारी वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये नैतिक रूप से सही है?
1: मैं कहूंगी कि नैतिक रूप से सही इसलिए नहीं है कि कल चलकर, माना कि रेडियो स्टेशंस के लिए अगर क्लोन बना दिए गए और इस्तेमाल भी कर लिए गए, आपने अपनी मैन पावर को कम कर लिया, आपके बहुत सारे मुद्दे सुलझ गए जहां आप मान लीजिए कि अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में 12 घंटे अपने देते हैं तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लोन चल जाएगा यानी कि क्लोनिंग वॉइस चल जाएगी। लेकिन ये मानिए कि ये जो दुनिया है ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर है, खासतौर पर अगर रेडियो की बात की जाए
0: जी।
1: तो जो हमें यहाँ सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो कल चलकर लोग अपनाते हैं। और जब किसी चीज को अपनाया जाता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी अपनाए जाते हैं और नकारात्मक भी। तो कहीं ना कहीं अगर वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल होने लगा तो कल चलकर बहुत ज्वलंत मुद्दे शुरू होने की आशंका है। क्योंकि कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए, मनुष्य के लिए, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन संसाधनों को वो कैसे उपयोग में लेकर आएगा। इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो हो सकता है जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मैं बनकर कुछ भी गलत कर सकता है। तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए
0: और इस पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। मैम, हम सामुदायिक रेडियो हैं, हम समुदाय के लिए ही काम करते हैं। तो आपने सुना होगा कि सोशल स्टोरी टेलिंग, मतलब समाज से जुड़े हुए मुद्दों की कहानियां जब बड़े मंच पर पहुंचती हैं तो वो लोगों पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ में जब हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या AI टूल्स आने से सोशल स्टोरी टेलिंग ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोग सोशल स्टोरी टेलिंग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, या पहले की तुलना में कम हुए हैं?
1: देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अगर खास तौर पर पत्रकारिता की बात की जाए ना, तो पूरी पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है
0: जी।
1: पहले एक जमाना हुआ करता था जब पत्रकार सिर्फ पेंसिल से लिखा करता था। फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, डिजिटाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी जो सशक्त पत्रकार हैं, सशक्त लोग हैं, जो आम जन की आवाज आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आज भी शब्दों की गरिमा को, या ये कह लीजिए विषय की गरिमा को बनाए बैठे हैं। आपके कुछ शब्दों से विषय बदल सकता है, उसका मुद्दा बदल सकता है। आप कितने सजग हैं और आप कितने ज्यादा अपनी जो समुदाय है उसके प्रति आप संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल कर या AI का इस्तेमाल कर आप अपनी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या फेरबदल हो गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो सर्वप्रथम अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल जो है ना, वो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन करता है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं
0: जी।
1: तो पूर्ण रूप से संवेदनशील विषयों पर AI पर निर्भर रहना, तो मैं यही कहूंगी क्रॉस चेक।
0: बिल्कुल, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, बार बार यही कहूंगी, निर्भर नहीं होना है
0: जी। बिल्कुल सही कहा, हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, उन पर निर्भर नहीं होना। तो मैम, अभी तक तो हम रेडियो कहते आए थे, लेकिन आजकल हम सुनते हैं स्मार्ट रेडियो। रेडियो अब स्मार्ट होता जा रहा है, रेडियो पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो रेडियो है उसके भविष्य को AI किस तरफ ले जा रहा है? ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है या इनोवेशन की तरफ लेकर जा रहा है?
1: देखिए, मैं ये कहूंगी कि सर्वप्रथम तो ऑटोमेशन
0: जी।
1: सर्वप्रथम ऑटोमेशन इसलिए है कि एक कार्यक्रम को बनाने के लिए ना जाने कितने दिन लगते थे पहले।
0: बिल्कुल,
1: बहुत दिन लगते थे, रिसर्च की जाती थी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, फिर स्क्रिप्ट में भी किस तरह की स्क्रिप्ट है ये डिसाइड किया जाता था। अगर पैनलिस्ट हैं आपके कार्यक्रम में तो आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता था, प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारे दिन लगा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब दुनिया भर में काम हो जाया करेंगे। इनोवेशन तो तब होगा जब हम एक नया फॉर्मेट लेकर आएंगे। कि रेडियो के माध्यम से हमने कहा कि हम टॉक शो कर रहे हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं तो इनोवेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ ऑटोमेशन है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि AI सिर्फ एक सहायक टूल है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से AI ने हमारे रेडियो के प्रोग्रामिंग को काफी आसान बनाया है, लेकिन श्रोताओं का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से बदलेगा? हम AI से कार्यक्रम तो बना लेंगे, प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन श्रोताओं का हमारे लिए इंटरेस्ट लगातार किस तरीके से बदलेगा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: देखिए, श्रोताओं का इंटरेस्ट तभी बदलता है जब आप उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत आत्मिक हो रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं,
0: जुड़ गए हम,
1: जुड़ गए। रेडियो के माध्यम से भले ही आप अपने श्रोता को नहीं देख सकते, श्रोता आपको नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो आवाज की जो गरिमा है, जो उसका जादू है ना, सुनने वाले को अपने रेडियो सेट्स पर यही सुनाई देता है जैसे साक्षात वो व्यक्ति ना मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ है
0: जी।
1: तो अगर हम एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, देखिए एआई की भाषा पर अभी भी हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। आपने कई बार अगर जो लोग चैट जीपीटी और इन सब का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक से कहते हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आप उनकी स्क्रिप्ट और एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को जब कंपेयर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आत्मीयता किस में ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगी और हर बार यही कहूंगी कि मानव मूल्यों का कोई तोड़ नहीं, और एआई आपको सामग्री दे सकता है लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जैसे इमोशंस नहीं डेवलप कर सकता, आपके जैसे बात नहीं कर सकता।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे जैसे ना तो इमोशन डेवलप कर सकता है ना श्रोताओं से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है। मैम हम छोटे स्टेशन हैं, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं उन्हें एआई को किस तरीके से देखना चाहिए, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए या एक अवसर के रूप में देखना चाहिए?
1: जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी चाहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो, प्राइवेट एफएम स्टेशन हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, हमारी आवाज़ किन के लिए है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए है जो हमें सुनना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में हमारी वजह से बदलाव आता है, जो बदलाव को महसूस करते हैं। अगर ख़ास तौर पर कम्युनिटी रेडियोज़ की बात की जाए तो अगर आपको वो उपकरण दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सशक्त कर सकते हैं तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि टूल्स का इस्तेमाल चाहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हों या कोई भी एफएम स्टेशन क्यों ना हो, जरूर करें, क्योंकि अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर हम संचालकों की बात करें जो आवाज की दुनिया के जादूगर हैं, उन्हें अपना जलवा आवाज का अपनी ही आवाज में यानी कि अपनी दिल की आवाज के जरिए ही करना है, ना कि एआई की दिल की आवाज के जरिए।
0: हाँ, यानी अपनी आवाज का जलवा बरकरार रखना है। मैम आपसे मेरा अब आखिरी सवाल है, और आपने हमें बड़ा कीमती समय दिया है अपना, लेकिन ये सवाल मेरे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है। हम सामुदायिक रेडियो हैं तो हम समुदाय की बात ही करेंगे क्योंकि हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। मैम समुदाय के बीच में जाकर एक बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि लोकल भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि समुदाय अपनी भाषाओं से बहुत तेजी से जुड़ता है। तो क्या एआई लोकल भाषाओं में प्रोग्राम बनाकर कंटेंट को और जीवंत बना सकता है और या उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है?
1: मैं तो यही कहूँगी, जब मेरी माँ बचपन से मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय भाषा में बात करती आई और मैंने उस भाषा में अपनी माँ को ढूंढ लिया, तो बताइए क्या एआई मेरी माँ बन सकती है? उसी भाषा में क्या एआई मुझसे बात कर सकती है जो मार फटकार प्यार दुलार मेरे परिवार से मुझे मिला मेरी भाषाओं या मेरी भाषा के माध्यम से, जिस भी क्षेत्र को मैं संबंध रखती हूँ जिस भी क्षेत्र से? तो जो चीज़ मुझे बिन मांगे मिल गई वो मांग कर यानी कि एआई के माध्यम से कैसे मिल सकती है? मेरा पूरा जीवन अपने क्षेत्रीय परिसर में गुजरा है।
0: बिल्कुल,
1: तो जो मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिया, जो भाषा मुझे प्राप्त हुई वहां से, एआई जिसका जन्म अब हुआ, वो कैसे मुझे वो दे सकता है जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था ही नहीं? तो जो मेरे साथ बचपन से था ही नहीं वो मुझे समझ ही नहीं सकता, जो मुझे समझ ही नहीं सकता वो मुझे वो क्या कैसे दे सकता है जिस बात की मैं कल्पना कर रही हूँ? तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्रता की अगर आप बात कर रहे हैं तो व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से संबंध है वही उन मूल्यों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। एआई फिर कहूंगी कि ये सहायता का उपकरण है।
0: बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रहा है।
1: जी,
0: एआई हमारी मदद कर रहा है सूचनाओं को देने में, हमें अपडेट करने में, हमारे टूल्स को आसान बनाने में, तकनीक को आसान बनाने में। फिर भी जो हमारी संवेदनाएं हैं उस पर हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमें समुदाय के बीच में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा, समझना होगा और लोगों की हर बात को अपने स्तर से पहुंचाना होगा। हाँ, तो श्रोताओं आप सुन रहे थे मेरे साथ गीतिका उनियाल जी को, जो कि एफएम रेनबो पर बहुत फेमस प्रेजेंटेटर हैं। उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और लोग उनकी आवाज़ से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम और आप भी जुड़ गए। आज स्टूडियो में उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमसे एआई तकनीक और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर काफ़ी बातें शेयर करी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। मैम आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, एक और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं फिर कहना चाहूंगी कि AI हमारे टूल्स की जानकारी के लिए प्रोडक्शन में मदद करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की जगह, ओरिजिनलिटी की जगह, जिज्ञासा की जगह, समुदाय की आवाज की जगह AI नहीं ले पाएगा।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत

सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें। यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं, तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है, जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है, जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। Beautiful track only on Suno Sharda 90.8 FM. So Shart Manzoor singers Palak Muchal and Muhammad Irfan. Music and lyrics by Sanjeev Chaturvedi. Label Tips Official. So let's listen to it only on Suno Sharda 90.8 FM.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सोची लूंगी पो।
1: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
2: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
1: हाँ
2: चलो धूम मचाते हैं।
1: फिक्स।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने

स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
3: हाय, नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती है। तो इसीलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई

0: मांसपेशी पक्षाघात और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: ओ, सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाए अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।